0: खतरों के खिलाड़ी every Saturday and Sunday at 7:30 PM on Colors and watch it anytime on Jio Hotstar.
1: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com.
2: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल, at all protected.
2: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
3: Four beers, please, garçon!
2: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
4: We're finally going home for the wedding.
5: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
6: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
5: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
6: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
5: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
6: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
7: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
0: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

तम नीच हुकुम लिख दुख सुख पाई है। एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भुआई है। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ताहो मैं कह ना कोए। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाईयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। कथना कथिना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाए। हुक्मी हुक्म चलाए राव, नानक विकसै वे पर।

मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे सुनिए सिद्ध।

जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कौन कहावी।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो स

अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश। आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश। एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख।

जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती छित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नान गया जापै जाए, धर्म

0: Gold Breakfast with Kajal.
1: I'd like to know कि क्या तोहफा लेके आया. मुझे भी एक तोहफा चाहिए. आज सुबह क्या तोहफा मिला पता है? Like a radio London or Manchester में आज है राज बदन सिटिंग इन फॉर डॉनी ब्रास्को और मैं हूं काजल आपकी हुसर आपकी दोस्त आपके साथ हूं 10 बजे तक ऑन लाइक अ गोल्ड लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स एंड लाइक अ रेडियो बर्मिंघम. और एक और न्यूज़ मैं शेयर करना चाहती हूं आपके साथ. मैंने आपको ये पता था कि एक और रेडियो स्टेशन हम लॉन्च करना जा रहे हैं तो आज से लाइक अ रेडियो ब्रैडफोर्ड यॉर्कशायर लीड्स भी लॉन्च हो चुका है और दैट ऑन डैब रेडियो फुल फॉर्म. तो अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली ब्रैडफोर्ड में हैं तो प्लीज उनको बताइए कि अभी वो सुन सकते हैं लाइक अ रेडियो. रीच यून कीजिए डैब रेडियो पे और वो सुन पाएंगे. एंड दैट्स हाउ वी मेक लाइक रेडियो नेटवर्क मच बिगर. कहीं भी दुनिया में आप सुन सकते हैं हमारी आवाज ऑन द ऐप लाइक अ रेडियो मोबाइल ऐप. ऑनलाइन भी सुन सकते हैं और अगर आप यूके में हैं तो ऑफकोर्स एज यू नो ऑन 1035 मीडियम वेव इन लंडन and dab radio. So 16 minutes past 7 is the time. Wakey wakey rise and shine. Abhi aapne suna do bahut hi achhe back to back songs. Film Dil se aapne suna Hum Pyar Karne Wale jo hai. Phir Tohfa se aapne suna Tohfa Tohfa jo Tohfa hum leke aa rahe hain aapke liye aapko bahut hi acha lagega aur wo hai ye
0: Bollywood flashback with Kajal.
2: Kab koi mil jaye kaun keh sakta hai.
3: मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता.
2: कभी आपने बारिश का संगीत सुना है?
0: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323.
1: Easy, na?
0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: And if I'm going to buy you 128.4 Indian rupees, make sure you transfer via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
1: And Kapil is the right one. The first one to get it right. Good morning, Kapil. Well done.

0: रहा हूँ।
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: समझो ना।
0: क्या समझू?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।
1: खाकरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
2: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाकरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
1: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
4: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
5: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
4: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
5: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
4: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
5: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: On this week's Leica Extra podcast, we talk myths and misconceptions about raising debts, where Kush speaks to me now.
7: A right kind of leverage on your balance sheet is actually good. You cannot grow your business without having a good debt. Debt is not an enemy of your business.
6: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Gold Breakfast with Kajal. Like a gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
3: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय
4: जॉइन महाराजा टूर्स ऑन अ 14 नाइट कैरिबियन क्रूज डिपार्टिंग 6 दिसंबर विद डायरेक्ट वर्जिन फ्लाइट्स फ्रॉम हीथ्रो टू बारबेडोस खूबसूरत बीचेस सनशाइन और 8 अमेजिंग कैरिबियन आइलैंड्स आपका इंतजार कर रहे हैं प्राइसेस फ्रॉम जस्ट £1,499 पर पर्सन ट्विन शेयर सीट्स लिमिटेड है तो आज ही बुक कीजिए विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846
5: भक्ति संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो 18 सितंबर को बेक थिएटर हेज में एक ही दिन में दो ग्रैंड शोज दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक प्रभु श्री राम की लीला हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव 18 सितंबर बेक थिएटर हेज टिकट्स बुकिंग के लिए विजिट करें श्री राम लीला .theshowmanstudio.co.uk
6: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 a 24-hour line.
7: This Ganesh Chaturthi, celebrate the spirit of togetherness and spread festive joy with your loved ones in India.
8: With ICICI Bank UK, send money to India and get a 20 paise preferential exchange rate.
7: Simply use promo code Ganesha20 when you transfer. The promotional period is 14th September to 24th September 2026.
8: So, this Ganesh Chaturthi, make every rupee count and share the joy from the UK to India.
7: ICICI Bank UK. Transfer now. Celebrate together.
9: ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. DLC supply.
10: Get ready, cricket fans. The T20 battle is on. Team India takes on Afghanistan in 3 explosive T20 internationals from 13th to 17th September. Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 PM exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now.
11: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100 Atoll Protected.
12: One performer.
13: Countless personalities.
12: A whole universe of entertainment.
13: Sunil Grover, live UK tour 2026.
12: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
13: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabi to brand new surprises.
12: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
13: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
12: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
14: Leica Radio Network. Proud hospitality partner.

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio.

0: Mocha Extra podcast update.
1: And this week's podcast update is actually our 33rd episode, hosted by Kush, who speaks to Minal Sambre, the founder of Samaria Global Finance, to break down myths around business debts. Watch this episode on all streaming platforms, including YouTube, Amazon, Apple, and other major streaming platforms. It's Leica Extra podcast.
0: Leica Extra is here.
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
0: काजल्स मॉर्निंग मंत्रा प्रेजेंटेड बाय मंत्रा हॉलीडेज, योर फ्रेंडली हॉलीडे पार्टनर फॉर यूके, यूरोप एंड अदर डेस्टिनेशंस। फॉर योर मेमोरेबल हॉलीडेज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड बजट, कॉल 0203-773-633 टू बुक योर ड्रीम हॉलीडे। काजल का मॉर्निंग मंत्रा

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: भक्ति संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो 18 सितंबर को बिग थिएटर हेज में एक ही दिन में दो ग्रैंड शोज दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक प्रभु श्री राम की लीला हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव 18 सितंबर बिग थिएटर हेज टिकट्स बुकिंग के लिए विजिट करें shriramleela.theshowmanstudio.co.uk
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
2: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com Limited offer. Terms and conditions apply.
4: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
5: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
6: Vande Ramam Sadaiva Mariyada Purushottamam Lokanatham Shri Ram Shri Ram
7: Diwali Story, The Journey of Ram and Sita.
8: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: Leica Gold. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold. Aur online suno LeicaGold.com pe.
10: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: लाइका गोल्ड। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782833 और विजिट travelhubworld.com।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट travelhubworld.com।
2: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October and marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars. Supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner Leica Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit safuk.com.
3: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 ऑक्टोबर सुधी रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा। वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे फर्स्ट फ्लोर यूनिट 2 साउथ राइस्लिप HA40JS। रोज कथा पछी महाप्रसाद पोथी यात्रा कपिल नारायण कथा कृष्ण जन्म गोवर्धन लीला रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों में जरूर जोड़ाओ। वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777 2875 09।

0: गुड मॉर्निंग। स्वागत है संगीत प्रेमियों का मनोरंजन की दुनिया में। मंगलवार वर्ष 2026 के सितंबर महीने की 15 तारीख। ये मंगलवार मुझे सोमवार जैसा क्यों लग रहा है? इसलिए भाई के कल छुट्टी पर थे शर्मा जी। क्या कर रहे हैं आजकल ये बीच बीच में छुट्टियों का? भाई अब तो ऐसा ही चलेगा। एक जमाना था बहन भाइयों, जरूरी छुट्टी भी नहीं ली और इस तरह से काम किया मशीन की तरह से। पर वो भाई वो दिन कुछ और थे, उन दिनों में सेहत कुछ और थी और तबीयत कुछ और थी, हालत कुछ और थी। अब भाई धीरे धीरे ठीक ठीक करेंगे, लेकिन आपका साथ छोड़ने को जी नहीं चाहता, बस इसलिए स्टूडियो पहुंच जाते हैं गिरते पड़ते। तो साहब कार्यक्रम शुरू करते हैं शायरी से और काम चलाते हैं इस डायरी से। आज जागे हैं गुलिस्ता के मुकद्दर फिर से, झूम ए दिल के बहारों के जमाने आए। आज पत्ते भी थिरकते हैं हवा की लय पे, भोले पंछी भी कोई गीत सुनाने आए। गुल को शबनम ने कलेजे से लगा रखा है, आज भंवरा न कोई रस को चुराने आए। ये चमकती हुई सुबह है गवाह खुशियों की, दौरे गम बीत गया वक्त सुहाने आए। आइए वक्त का फायदा उठाएं।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. Across Greater Manchester on 1377, 963 AM and DAB. And now also in Bradford and Leeds. This is Leica Radio.
0: आज जागे हैं खुशियों के मुकद्दर फिर से, झूम ए दिल के बहारों के जमाने आए। अरे बहारों के जमाने नहीं भाई, आप आए हैं तो बहार आई।

0: धमाकेदार शुरुआत भाई, बहुत सारी बातें, बहुत सारे संस्मरण और बहुत सारी यादें आपके साथ साझा करने को जी चाहता है। लेट मी टेल यू, माय नेम इज़ रवि शर्मा। और बहनों भाइयों, कल छुट्टी की मैंने नहीं आ सका, कुछ ज़रूरी काम थे, पर उसके लिए भाई ऋतु शर्मा को धन्यवाद देना नहीं भूलूंगा मैं। इसके अलावा भाई कल एक बड़ा त्यौहार था और वो त्यौहार चल रहा है, 10 दिन तक चलता है, उसके बाद फिर विसर्जन पे समापन होता है। गणेश चतुर्थी थी कल, बहुत सारे लोगों ने गणपति पूजन किया और एक संस्था तो आज भी कर रही है, 10 दिन तक चलता है। महाराष्ट्र में ये विशेष रूप से बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लोग गणेश जी को घर पर लाते हैं, स्थापित करते हैं और पूरा घर मंदिर बन जाता है। बड़ी पवित्रता से, बड़े अनुशासन से, संयम से एक एक दिन एक एक पल गुजारते हैं। और भाई शुद्ध खान पान, शुद्ध जो है व्यवहार और भाई भजन पूजन सब घर को मतलब बहुत पवित्रता से संवारते हैं। लेकिन एक और पर्व है आज भाई, उसका भी पवित्रता से संबंध है, मन की पवित्रता, शोधन एक तरह से अपने जीवन का, शरीर का, फिर मन का, अंतरात्मा का, ऐसे करते हैं लोग, उसे कहते हैं पर्युषण। तो भाई पर्युषण के लिए भी हम अपने श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेंगे। ये रेडियो जो है लाइका रेडियो नेटवर्क आपके साथ भाई अपने सारे तीज त्यौहार, आपके सारे भाई वो रीति रिवाज वो सारे साझे करता है। तो भाई हमारी ओर से दिल की गहराई से आपको इन तीज त्यौहारों की बधाई और शुभकामनाएँ पहुँचे। जिक्र करेंगे भाई चिंतन में भी, पर्युषण ये एक ऐसा पर्व है जिससे भाई मन इतना हल्का और पवित्र हो जाता है। और इसका बहुत सारे लोग अर्थ समझते हैं कि हम क्षमा करते हैं और क्षमा मांगते हैं। भाई गलतियां होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन उनका एहसास करके, पश्चाताप करके और उनको भाई जो है क्षमा याचना की, क्षमा ये बता दूँ आपको कि कोई कमज़ोर आदमी नहीं कर सकता, बहादुरी चाहिए क्षमा मांगने के लिए, बड़ा एक स्ट्रांग विल पावर होनी चाहिए, तब कोई कह सकता है कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोई भी और गलती का पता भी ना हो, भाई शायद मुझसे कोई गलती हुई हो पूरे वर्ष में, तो मैं क्षमा याचना करता हूँ, मेरे किए हुए कर्मों के लिए आप मुझे क्षमा करें और भाई मैं आपको क्षमा करता हूं, आइए एक नई शुरुआत करें, मैं सभी जीवों को माफ़ करता हूं और सभी जीव मुझे क्षमा करें। ये संदेश आज के समाज में भी बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि क्षमा से मन की कटुता, कड़वाहट दूर होती है और प्रेम, शांति तथा सौहार्द बढ़ता है। तो भाई इसे उस परंपरागत और भाई पौराणिक भाषा में मैं कहूँगा, मिच्छामी दुखड़म। यदि मुझसे भी कभी किसी बात से आपको कष्ट पहुंचा हो तो कृपया क्षमा करें। आइए आगे बढ़े।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो नोट कीजिए बहनों भाइयों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके की ओर से आज का रेट एक पाउंड के बदले भारतीय मुद्रा में, इंडियन करेंसी में, दे आर गिविंग 128.9 रुपीज, 128.90 रुपए का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Leica Gold. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
2: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
3: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
2: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
3: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274, बुक योर टेबल टुडे।
0: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
2: लंदन, गेट रेडी for an unforgettable night.
4: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
2: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
4: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
2: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
4: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
2: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner, Leica Radio Network.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
2: माया भाईनी मौजमाणमा थई जाओ रेडी माँ कृपा फाउंडेशन्स यूके प्रेजेंट्स भव्य डायरो माया भाई आहिर जयश्री भोजविया अने निर्मल सिंह झाला साथे 26 सितंबर 2026 ना रोज
3: वेन्यू फर्स्ट फ्लोर यूनिट 3 10 स्टोन फील्ड वे साउथ राइसलीप HA40JS
2: टिकट्स 30 40 अने 50 पाउंड्स लाइट रिफ्रेशमेंट इंक्लूडेड
3: बुकिंग माटे कॉल करो रश्मि शाह 0772-287-509
1: London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
5: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
4: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
6: Sonatours.co.uk special offer holiday of a lifetime with amazing discount. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
7: Chupke, chupke raat din aansu bahar.
8: Aapka naya station, Leica Radio Ghazals, bahut jald aa raha hai.
9: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
10: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और बहन भाइयों, गीत सुना आपने फिल्म तीन देवियां से। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब। गीत में इतने लटके झटके खटके थे, ऐसा लग रहा था जैसे भाई सिनेमा देखते हुए लोगों को स्क्रीन भी हिलता हुआ नजर आया होगा। हीरो तो हिल ही रहे थे, इधर उधर उछलते कूदते, और भाई हीरोइंस और उसके साथ म्यूजिक की जो शब्दावली और ट्यून जो थी वो सारी इधर उधर होती नजर आ रही थी। पर बहुत मीठा गीत है, पुराना गीत है, लेकिन आज भी सुनने से भाई दिल भरता नहीं है, बार बार सुनने को दिल करता है। राइट, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना, और ये गीत लिया हम इस मोड़ पर। एक सूचना है जो आपके साथ साझा करनी है। भाई लाइका रेडियो नेटवर्क इज़ प्राउड टू पार्टनर अप, यानी भाई उनके साथ मिलकर के हम एक सहयोग कर रहे हैं उन्हें, कौन सनातन इवेंट्स फॉर दिवाली स्टोरी विच अराइव्स एट ओवो वेम्बली अरीना ऑन संडे 27 सितंबर। Doors open at 4:30 PM with a student pre-show from 5 PM to 5:45 PM. ये पहला शो, और उसके बाद मेन परफॉर्मेंस जो है वो शाम 6:15 बजे से रात 9:30 बजे तक चलेगी, और वो अरीना में 27 सितंबर को। नोट कर लीजिए, क्रिएटेड बाय नितिन पालन MBE एंड फीचरिंग क्रिएटिव डायरेक्शन एंड कोरियोग्राफी फ्रॉम द बॉलीवुड डांस स्कूल टीम लेड बाय रोहन एंड Shruti Shah. The English language production brings the Ramayana to life with 4 chapters, a bespoke 7-song soundtrack and a full international cast. भाई थोड़ी सी झलकी तो यहाँ लंदन में दिखाई गई थी इसकी, और मैं देखा था, बड़ा प्रभावित हुआ था मैं, लेकिन वो तो भाई लोगों को बताने के लिए कि छोटा सा ट्रेलर के क्या कुछ होने जा रहा है मंच पर तो जरूर देखिएगा। टिकट्स के लिए नोट कीजिए www.diwalistory.com।
0: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
2: 10:30 बज चुके हैं भाई, खबरों पर नजर डालें तो खबरों में ज़्यादातर तो भाई समाचार हम सब कॉन्टिनेंट से लेते हैं, लेकिन यहाँ लोकल समाचार भी ब्रिटेन के भी हम शामिल करते हैं। एक इवेंट जो बहुत चर्चा में है वो भारत में राजधानी दिल्ली में अभी अभी हुआ है, जिसका नाम है ब्रिक्स भाई सम्मेलन। आइए उससे समाचार शुरू करते हैं। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। ब्रिक्स समिट में भाई रशिया के जो है पुतिन साहब, चाइना के जिनपिंग साहब, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो होस्ट थे ही, और भी कई देशों के भाई अध्यक्ष शामिल हुए। अब उसकी चर्चा तो होनी चाहिए, क्या क्या वहाँ डिस्कशंस हुई हैं, और भाई शक्ति का एक समूह जो है वो सर उठा रहा है, लेकिन चर्चा हो रही है वहाँ के भोजन को लेकर के। ब्रिक्स समिट में शाकाहारी खाना परोसा गया, और भारत में ही अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और कुछ और नेता सवाल उठा रहे हैं कि ये शाकाहारी भोजन क्यों परोसा गया। अब इस पर रामदेव जी, योग गुरु रामदेव जी ने भाई अपना एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया अब वीगन जीवन शैली की ओर बढ़ रही है, और इस मुद्दे को धर्म के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। रामदेव ने कहा कि दुनिया पहले मांसाहारी भोजन से शाकाहारी भोजन की ओर बढ़ी, और अब दुनिया वीगन जीवन शैली की तरफ बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं वो बौद्धिक दिवालियापन यानी अकल से दिवालिये हो गए हैं, शिकार हो गए हैं उसका। दरअसल आपको बता दें कि भारत मंडपम में जो वेन्यू था इस आयोजन का, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का, उसमें भाई गाला डिनर ऑर्गेनाइज हुआ था, और गाला डिनर में पनीर, लबाबदार गुच्छी, मार्मिक, कैरेट, बीन, पोरियल, ठक्कली, बेले, सारू, एक से बढ़कर एक व्यंजन तैयार किए गए सब्जियों के द्वारा। ऐसे बीट रूट, रायता जैसे व्यंजन परोसे गए, और इसके बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि भारत के 80% लोग मांसाहारी हैं। ये थी एक खबर। दूसरी, बहुजन समाज पार्टी मायावती वाली पार्टी, भाई उनकी चीफ मायावती ने इल्जाम लगाया है कि सरकारी मशीनरी की गड़बड़ी की वजह से राजस्थान में लोकल इलेक्शंस में उनके कई उम्मीदवार हार गए। भाई इसमें अच्छी परफॉर्मेंस की है बीजेपी ने, उसके कई जो है कई सीटें उन्होंने जीती हैं, लेकिन इसमें बीजेपी को भी सोचने के लिए मजबूरी होना पड़ रहा है, क्योंकि उसके बड़े बड़े नेताओं के कार्यक्षेत्र में कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उस पार्टी की जो है वो कई जो है सीटों पर हार हुई है। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि राजस्थान में हुए लोकल चुनाव में बीएसपी ने इस बार 19 सीटों पर अपने पार्षद जिताकर भेजे हैं। कई उम्मीदवार सरकारी मशीनरी की गड़बड़ी से दोबारा गिनती में जबरदस्ती थोड़े थोड़े वोटों के अंतर से डिफरेंस से हार गए हैं। कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर जनता से यूपीआई पेमेंट के जरिए वसूली की तैयारी करने का इल्जाम लगाया है। पार्टी ने दावा किया कि सरकार 2000 रुपए से अधिक के हर यूपीआई पेमेंट पर 0.5% चार्ज लगाने की योजना बना रही है। दरअसल 14 सितंबर यानी कल से जारी सरकारी अधिसूचना के अनुसार 2000 रुपए तक के यूपीआई पेमेंट पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये सरकार का पक्ष है। इंटरनेशनल खबरों में छाए हुए हैं ट्रंप। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी पत्नी बेटिना ने पुष्टि की है कि उनकी शादी का कुछ खर्च रूस के एक कारोबारी ने उठाया है। मामला तो बनता है। फिर इस कारोबारी का नाम उम्र क्रेमलेव है, जिसके रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बड़े करीबी रिलेशंस हैं। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और बेटिना की शादी मई में हुई थी। अब दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि बहामास के एक प्राइवेट आइलैंड पर ऑर्गेनाइज्ड इस शादी के फंक्शन की 2 रातों की मेजबानी उमर क्रेमलेव ने की थी। रशियन इजरायली फौज ने दावा किया है कि उसने कल सोमवार को गाजा में एक फौजी अभियान में हमास के 5 सदस्यों को मार दिया है, जिनमें एक कमांडर भी शामिल है। कमांडर्स में 2 मेंबर्स को उन्होंने मारने का दावा किया है। द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली फौज और इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी शिनबेट ने हाल के हफ्तों में गाजा में अपनी आतंकवादी विरोधी यानी एंटी टेररिज्म कार्रवाइयों को तेज कर दिया है। बात क्रिकेट की करें, मोहसिन नकवी से महिला टीम की ट्रॉफी न लेने पर बीसीसीआई ने अब एक बयान दिया है। आपको बता दें कि भारत ने भाई एशिया ट्रॉफी जीती और एशिया ट्रॉफी जीतने के बाद मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। और भाई मोहसिन नकवी जो है पहले भी पुरुषों की टीम भी ऐसा कर चुकी थी। महिला एशिया कप जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष आजकल मोहसिन नकवी हैं उनसे ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। इस मामले पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने कहा कि ट्रॉफी नकवी से नहीं लेने का फैसला टीम और अधिकारियों ने आपसी चर्चा के बाद सामूहिक रूप से लिया था, मिलकर लिया था। राजीव शुक्ला ने कल कहा कि ट्रॉफी को लेकर हमने आपस में बात की और फैसला किया कि हम उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, इसमें कोई झगड़ा या टकराव नहीं हुआ। एशिया कप जीतने के बाद भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली, लेकिन इस पर चर्चा बड़ी हो रही है। भाई नकवी पाकिस्तान के होम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के चीफ भी हैं। इसके बारे में असदुद्दीन ओवैसी ने एक सवाल उठाया कि भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल ही क्यों रहा है। भाई ये इंटरनेशनल मतलब एशिया कप जो है वो और भी कंट्रीज हैं, तो अगर नहीं खेलेगा भारत पाकिस्तान के साथ वो पहले वाली स्थिति होगी, लेकिन उनका सवाल भी जायज़ है। वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ क्यों खेलते हैं, जब सिंधु जल समझौते को रोक दिया गया है, आईसीसी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे ज़रूरी हो सकता है, आप बीसीसीआई को टीवी राइट्स के जरिए पैसा कमाने दे रहे हैं, मतलब उन्हें पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, आप उस पर भी पाबंदी लगा सकते हैं, ओवैसी ने कहा। पाकिस्तान में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। अब 1 लीटर की कीमत कितनी हो गई है? वल पेट्रोल की कीमत में 4.42 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है और इसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 380.24 रुपये प्रति लीटर हो गई है। सरकार ने नई कीमतों को आज से तुरंत लागू करने का फैसला किया है। हाल के दिनों में पाकिस्तान में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की प्राइसेस में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। हूती विद्रोहियों ने कल दावा किया कि सऊदी अरब ने पिछले 24 घंटों में यमन के अलग अलग इलाकों में 54 हवाई हमले किए हैं। उनके द्वारा कहा गया कि सऊदी की एयरफोर्स ने F-15 और टाइफून लड़ाकू हवाई जहाजों के जरिए यमन के इलाकों को निशाना बनाया। उनके मुताबिक इन हवाई हमलों में ताइज, लहज, जोफ और मारिब होदेइदा के इलाके शामिल हैं। वाली ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
0: ये है लाइका गोल्ड Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: संगीत की तरफ लौट आइए। लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड रेडियो, आप रवि शर्मा के साथ सुन रहे हैं। आइए मांगे, दुआ के लिए हाथ उठाइए।

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: ये है लाइका गोल्ड.
2: Holiday breaks are brought to you by South All Travel.
3: Well, South All Travel का पैगाम भाई वो कहते हैं कि हम we are famous, we are known for our competitive holiday deals to Dubai. तो भाई संपर्क कीजिए, दुबई की सैर करना चाहते हैं तो contact South All Travel today on 0208-574-8410. South All Travel is at all protected.
2: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
4: ये है Leica Gold. 10:35 AM.
5: Travelhubworld.com. कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on travelhubworld.com. Flights and holidays. हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call Travel Hub 24/7 on 0208-782-8833 or visit travelhubworld.com.
6: Travel Hub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
6: Visit travelhubworld.com.
7: We're finally going home for the wedding.
8: I know, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
7: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos and keeping everyone updated.
8: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations. 4G and 5G where available.
7: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
8: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
7: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
2: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
9: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Da New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Da New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
10: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
11: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
10: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता.
11: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
12: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो.
11: Book now on diwalistory.com before they are gone. Official TV partner ZTV and exclusive radio partner Leica Radio Network.
13: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
14: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410 दैट्स 8574-8410 साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.

0: से।
1: सेट गो माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स,
2: हर मौके पर काम ये आए, घर घर खुशियां लाए।
1: जहां जिंदगी वहां सेट को माइक्रो।
3: फ्रॉम साउथ ऑफ ब्रॉडवे टू द लंदन ट्यूब, यूके, द बिग बैंग ऑफ एंटरटेनमेंट हैज अराइव्ड। बिग मूवीज चेक, बिगेस्ट ऑफ स्टार्स चेक, अनमिसेबल रियलिटी ड्रामा टू ब्लो अप योर ग्रुप चैट एब्सोल्यूट चेक। जियो हॉटस्टार इज नाउ लाइव इन द यूके। डाउनलोड द ऐप एंड सब्सक्राइब टुडे।
4: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
5: Don't miss out. Call 0208-150-2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
6: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.

स्वागत है श्रोताओं का मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। और इस दौर में हम आपका स्वागत चिंतन से किया करते हैं। थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और भाई, आज के चिंतन के लिए आलेख हमें कई लोगों ने भिजवाए हैं। उनमें एक तो भाई हमारे परमादरणीय मित्र आनंद जी वीर जी शाह मुंबई से भिजवा रहे हैं, याद दिला रहे हैं आज के पर्व के विषय में। हमारी बहन भावना पारेख करौली से आज के त्योहार के विषय में हमें याद दिला रही हैं। और हर वर्ष वो याद दिलाती हैं, हर वर्ष हमें चिंतन भेजती हैं आज के दिन के लिए। खासकर आज के वही चिंतन में हम कयूर शाह वेदा वाले पिनर से हमें आज के पर्व की भाई उन्होंने याद दिलाई, एक जो है जीवंत घटना के साथ। और भाई हमारी स्टाफ मेंबर हैं अलका शाह, वो भी आज कह रही है कि भाई आज के पर्व के विषय में आप चर्चा करें। अतुल जैन ब्लैक पूल से आज के त्यौहार के बारे में याद दिला रहे हैं। भाई आज एक नहीं दो दो त्यौहार हैं, क्योंकि वो जो मराठा मंडल है, मराठी मित्र हैं, वो गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से समापन कर रहे हैं। यानी गणेश विसर्जन कोई एक दिन के लिए, कोई एक से ज़्यादा दिनों के लिए स्थापित करते हैं भगवान गणेश की मूर्ति को अपने घर में। तो भाई वो आज हाउंसलो में बड़ी धूमधाम के साथ ये पर्व मना रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई उस उत्सव का भी चर्चा हो। और बता दें आपको भाई, हम लोग जो हैं जिस क्षेत्र से आते हैं वो तीज त्योहारों का देश है। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय कई तरह के त्योहार वहां मनाए जाते हैं। कुछ मौसम के साथ जुड़े होते हैं, कुछ इतिहास के साथ। हमारी बहन भावना पारेख लिखती हैं कि रवि भाई, जैन धर्म के 24वें प्रॉफिट यानी तीर्थंकर भगवान महावीर शासन के युग के वो जैनी हैं। सत्य, आचार्य, चोरी नहीं करना, व्यवहार अपना सात्विक रखना, अहिंसा, परिग्रह, इन सब बातों की शिक्षा उनके जीवन से मिलती है। बिल्कुल मिलती है साहब। लेकिन आज के त्योहार के बारे में मैं सोच रहा था कि भाई जिसे पर्युषण कहते हैं, क्या अभिप्राय है उसका, क्या मतलब छुपा है उसके पीछे। तो पता लगा भाई, पर्युषण जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार माना जाता है। ये आत्मशुद्धि, तप, संयम, यानी अपने आप को पवित्र करने। दूसरों पर तो भाई हमारी नजर रहती है, दूसरों में हम कमियां निकालते हैं, लेकिन कभी अपने भीतर झांक करके अपने आप को प्योर, पावन बनाने की प्रक्रिया को आप पर्युषण कह सकते हैं। संयम, तप, क्षमा और स्पिरिचुअल चिंतन, ये उसका उत्सव है। आज क्षमा का संवत्सर भी है, आज क्षमा का संवत्सर है, स्वयं को पावन करने का अवसर है, अपने भीतर उतरना, आत्मचिंतन करना पर्युषण है। श्वेतांबर जैन परंपरा में ये त्योहार आमतौर पर 8 दिनों तक मनाया जाता है। श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, सफेद कपड़े पहनने वाले, जबकि दिगंबर वस्त्रहीन तपस्या करने वाले, उनकी परंपरा में 10 दिनों का ये पर्व 10 लक्षण महापर्व कहलाता है। क्या करते हैं लोग, पता लगा ना हमें। हमारे भाई कयूर शाह ने देखिए बड़े सम्मान के साथ भोजन पर आमंत्रित किया था, हम समय नहीं निकाल पा रहे थे, तो भाई हम चले गए इस वीकेंड पर उनके यहां। कयूर शाह ने भाई बड़े प्रेम से कितने तरह के व्यंजन हमें परोसे, बड़े प्रेम से खाना खिलाने लगे। तो हमने कहा भाई आप भी बैठिए, साथ खाइए ना, मिलके खाते हैं। तो भाई हाथ जोड़कर कहने लगे, आप तो जानते हैं कि आजकल पर्युषण चल रहा है, पर्युषण में हम उपवास रखते हैं। क्या बात है भाई, आप औरों को खिला रहे हैं, स्वयं नहीं खा रहे हैं। जैन संप्रदाय के लोग उपवास रखते हैं ताकि भूख का एहसास उन्हें हो और फिर वो सबको भोजन कराएं। आत्मशुद्धि हो रही है उपवास से,
स्वाध्याय करते हैं, ध्यान और प्रार्थना करते हैं, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह जैसी भावनाओं पर कंट्रोल की कोशिश होती है, और सभी जीवों के प्रति मैत्री और करुणा का भाव, दोस्ती। इस त्योहार का सबसे बड़ा संदेश है क्षमा, यानी माफ करना, माफी मांगना, अहिंसा और आत्म सुधार। कई लोग अड़ जाते हैं, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हम किस बात की माफी मांगे। अरे कभी कभी आपको भी नहीं पता है कि आपने किसी का दिल दुखा दिया है।

पक्का वाक्य है, जिसका मतलब है कि यदि मैंने मन वचन या कर्म से आपको किसी भी प्रकार का दुख पहुंचाया हो तो मुझे क्षमा करें, मेरे सभी दोष निष्फल हो जाएं। ये सिर्फ एक औपचारिक अभिवादन नहीं है, बल्कि विनम्रता, क्षमा, प्रेम का संदेश है। आप भाई किसी से कहेंगे ना, कितने झगड़े खत्म हो जाए साहब, मित्रों के बीच, कारोबारियों के बीच, व्यापारियों के बीच, समाज के बीच, देशों के बीच, गवर्नमेंट्स के बीच, कितने झगड़े समाप्त हो जाएं अपने परिवार, मित्रों, जानने पहचानने वालों और जीवों से। जैन संप्रदाय के लोग क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, खामेमी सव्वे जीवा खमंत में, खामेमी सव्वे जीवा, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं, सव्वे जीवा खमंत में, और सभी जीव मुझे क्षमा करें। भाई ये नम्रता के बिना तो ऐसा कहा ही नहीं जा सकता। और मैं फिर याद दिला दूं कि केवल बहादुर लोग ही क्षमा मांगते हैं, कायर लोग तो अकड़ दिखाते हैं, कायर लोग तो झगड़े को बढ़ाते हैं, बहादुर लोग झगड़े मिटाते हैं, प्रेम बढ़ाते हैं। अब आप कहेंगे हमने कोई गलती नहीं की है, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने जिंदगी में कभी कोई गलती ना की हो, है कोई ऐसा? ढूंढिए, बताइए, हम मिलना चाहेंगे, दर्शन करना चाहेंगे। गलतियां होती हैं, भूल होती है, हम गलतियों के पुतले हैं। आइए अपने मन को साफ करें, खुद के साथ इंसाफ करें, क्षमा मांगें और क्षमा करें।

किशोर कुमार और फिर लता मंगेशकर भाई, दो अलग अलग गीत एक ही फिल्म से एक ही संदेश के साथ हमने आज के चिंतन के साथ जोड़ करके प्रस्तुत किए।

0: आज क्षमा का संवत्सर है। भूल सभी से होती है, गलती हर किसी से होती है। क्षमा याचना करके अपने शुद्ध को, अपने अंतःकरण को पवित्र बना लो। मन को पावन करने का शुभ अवसर है आज, क्षमा का संवत्सर है। पर्युषण पर्व की हम सबको बधाई और शुभकामनाएं देते हुए भाई धन्यवाद दें आज के चिंतन में अपना योगदान देने वाले हमारे परम मित्र मुंबई में आनंद जी, वीर जी, शाह कल्याण जी, आनंद जी की जोड़ी के आनंद जी भाई जुड़े हैं हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच आनंद जी भाई। और कयूर शाह वेदा वाले भाई, आपका योगदान भी सर आंखों पर। पर्युषण की आपको भी बहुत बहुत बधाई। अतुल जैन, प्रतिभा जी, थैंक यू वेरी मच। और हमारी भावना पारेख बहन करौली से हमेशा जैन त्योहारों के विषय में हमें जानकारी भिजवाती रहती है। क्षमा याचना सिर्फ बहादुर लोग ही कर सकते हैं, कायरों के बस का काम नहीं है। क्षमा करना और क्षमा मांगना जीवन को पवित्र बना देता है, निर्मल बना देता है हृदय को। तो बहन भाई, ये था आज का चिंतन। पर्युषण पर्व की शुभकामनाएं देते हुए चिंतन को समेटते हैं, याद दिलाते हैं चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद आप सुनते हैं। आज का चिंतन अब खत्म होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. याद दिला रहे हैं भाई, पैसे भारत भिजवाने तो रेट अच्छा चल रहा है आजकल। Today SBI UK giving 128.9 rupees भारतीय मुद्रा में for one pound. 128 रुपए और 90 पैसे का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर बाय ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Like a gold.
4: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.

0: में नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
3: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
4: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
3: अ स्पेक्टेकुलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
5: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो।
3: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन। ऑफिशियल टीवी पार्टनर जी टीवी, एन एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आवर रेडियो नेटवर्क।
6: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 or 24 Our line.
7: This Ganesh Chaturthi, celebrate the spirit of togetherness and spread festive joy with your loved ones in India.
8: With ICICI Bank UK, send money to India and get a 20 paise preferential exchange rate.
7: Simply use promo code Ganesha20 when you transfer. The promotional period is 14th September to 24th September 2026.
8: So, this Ganesh Chaturthi, make every rupee count and share the joy from the UK to India.
7: ICICI Bank UK, transfer now. Celebrate together.
9: ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TLC supply.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड।
1: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
2: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
1: ये तो बताओ, कोई पता चला?
2: गुरु गुरु,
3: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
2: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है।
3: सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
1: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र।
3: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
4: टू बुक कॉल 0208-514-5400, बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
0: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Lyca रेडियो नेटवर्क। No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
5: रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
6: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
5: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
6: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस।
5: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
7: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
8: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
7: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
0: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
9: Lyca Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at lycaradio.com and the Lyca Radio mobile app. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
10: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
11: TravelHub.
10: At all protected.
9: Lyca.
12: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
13: लौटाइए संगीत की ओर और सुनिए लता जी और स्वर्गीय मुकेश जी के स्वर में ये न्यारा सा और प्यारा सा गीत।

0: Breaker Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
1: और भाई भाई एक सूचना आपके लिए भाई, वो ये क्रिकेट से जुड़ी हुई है और सूचना ये कि कैच लाइव एंड एक्सक्लूसिव क्रिकेट एक्शन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। दिलचस्प मैच भाई ये जियो हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। 3 वनडे इंटरनेशनल्स फ्रॉम 13th of September यानी संडे से शुरू हो चुके हैं ये मुकाबले और भाई थर्सडे 17 सितंबर तक चलेंगे। तो दोपहर बाद 2:50 पर या 3 बजे के आसपास ये मैच शुरू होते हैं और आप जियो स्टार पर देखिएगा। डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू द जियो स्टार जियो हॉट स्टार ऐप नाउ। जियो हॉट स्टार इज आल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप।
0: Like a gold ace 5. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
1: और भाई ये गीत जा रहा है गणपति को घर में स्थापित करके घर को मंदिर बनाने वाले लोगों के नाम। हमें पंकज और वंदना कहते हैं, हमारे घर में गणेश जी पधारे हैं, हम उन्हें बड़े आदर के साथ लेकर के आए हैं, सर आँखों पर बिठाए हैं। आप कोई गीत हमारी ओर से उनके लिए लगा दीजिए, गणेश जी के लिए। भाई बड़ा मीठा सा इन्विटेशन। मुंबई से शिखा लिखती हैं कि मेरे घर में भी गणपति आए हैं। भाई आपको बता दें, मुंबई में भी ये त्यौहार बड़े ज़ोर शोर से मनाया जाता है और सुना है भाई सलमान खान भी अपने घर में गणपति की स्थापना करते हैं और फिर विसर्जन करते हैं। भाई जिन जिन के घरों में गणपति जी आए हैं और जो नहीं अभी तक लेकर के आए हैं, उनकी ओर से गणेश जी को मीठा सा निमंत्रण इस गीत के माध्यम से हम भिजवाते हैं। कहते हैं भगवान गणपति का स्मरण करके जो काम शुरू किया जाता है निर्विघ्न यानी बिना किसी रुकावट के सफल हो जाता है। विघ्न विनायक कहते हैं उनको, विघ्नों का विनाश करने वाले।

0: पंकज एंड वंदना और गीता
1: घर में
0: आप सबकी, और जाहिदा भी कह रही है भाई मैं, हम भी उन इस उत्सव में शामिल हुए हैं। घर में पधारो गणपति देव, स्वागत है आपका।

देवी ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी भाई, गणेश चतुर्थी की कल जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भाई जिन्होंने 10 दिन के लिए अपने घर में ये आयोजन किया उनको भी बधाइयां। स्वाति थैंक यू वेरी मच एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं। नानावती परिवार को गणपति उत्सव की बहुत बहुत बधाई।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Leica Extra Podcast Update.
3: लेट मी टेल यू अबाउट लाइक एक्स्ट्रा के नए एपिसोड के बारे में. भाई नया एपिसोड नंबर 33 अब उपलब्ध है, होस्टेड बाय खुश और टाइटल है मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट रेजिंग डेट्स. ये भाई बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, फाइनेंशियल जानकारी है. खुश स्पीक्स टू मीनल सामरे, फाउंडर ऑफ सामरिया ग्लोबल फाइनेंस, टू ब्रेक डाउन मिथ्स अराउंड बिजनेस डेट्स. भाई बड़ी गंभीर जानकारी है, खासकर व्यापारी वर्ग के लिए, बिजनेस वालों के लिए. तो ज़रूर आप देखिएगा लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट, अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म.
0: लाइक एक्स्ट्रा इज हियर. गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: TravelHubWorld.com. Kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, best service with unbeatable price.
3: At all protected.
4: Visit travelhubworld.com.
5: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The new properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the new properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
6: 0730099823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823.
7: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन.
8: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
7: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता.
8: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर.
9: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो.
8: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन. ऑफिशियल टीवी पार्टनर जी टीवी एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
10: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
11: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
12: Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
13: Southall Travel can take you there.
14: Southall Travel, at all protected.
2: भक्ति, संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज. द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला, अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो, 18 सितंबर को बिग थिएटर हेज में. एक ही दिन में दो ग्रैंड शोज, दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक. प्रभु श्री राम की लीला, हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव. 18 सितंबर, बिग थिएटर हेज. टिकट्स बुकिंग के लिए विजिट करें श्री रामलीला theshowmanstudio.co.uk.
15: Get ready, cricket fans. The T20 battle is on. Team India takes on Afghanistan in three explosive T20 internationals from 13th to 17th September. Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 p.m. exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now.
16: Leica Radio is proud to support the Mental Health Film Festival, Unspoken, featuring short films, feature films and panel discussions across London between October 9th and 11th.
17: Sonatours.co.uk special offers with amazing discount. 16 days China for 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours on 0208-951-0111.
16: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Cool, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Leica Cool aur online suno leicagold.com pe.

जानी दुश्मन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। भाई किशोर कुमार और महेंद्र कपूर ने साथ साथ आवाजें किसी गीत में शामिल कराई हैं वो ये है। बहुत कम गीत ऐसे मिलेंगे आपको जिनमें ये दोनों कलाकार साथ गा रहे हो। किशोर रफ़ी साहब के गीत मिल जाएंगे, किशोरदा और मुकेश जी के गीत मिलेंगे, पर किशोर और महेंद्र कपूर कम गीत हैं। अगर कोई आपको सूझे तो बताइएगा। इसी बीच भाई बहुत सारे मैसेजेस आ गए हमारे पास। राजेश आप भिजवा रहे हैं शुभकामनाएं, मिच्छा में दुखड़म कह करके कि जाने अनजाने कोई भूल हुई तो भाई उनकी मैं क्षमा याचना करता हूं। थैंक यू राजेश। इसी तरह मानसी आपका संदेश आ गया है हमारे पास, थैंक यू। विजय मॉरिशस वाले सुन रहे हैं हमें, और हंसा वोरा जी कहती हैं आज मुझे गाने बहुत ही पसंद आ रहे हैं, सारे आप ही के लिए लगा रहे हैं, रख लीजिएगा संभाल के। स्लो वाली रानी जी, राजेंद्र राज जी थैंक यू वेरी मच, अच्छा जोक है पर मुझे घर जाना है शाम को, इसलिए मैं बीवी पे ऐसा जोक छोड़िए क्या रखा, सच्ची बात हमें छोड़िए।

0: ललित छत्रिशा जी, थैंक यू वेरी मच। आज का चिंतन आपको बहुत पसंद आया, शुक्रिया कीर्ति। सुनते रहिएगा चिंतन, फॉरवर्डेड टू अमेरिका। अमेरिका में आपने दोस्तों रिश्तेदारों को आपने भेजा, थैंक यू, अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं आप। विजय ये सटन वाले, थैंक यू। हिना, निर्मला, अरुणा, पम्मी सिंह और श्रीनिवास जी, थैंक यू वेरी मच। आप भी करें मिच्छा मी डोकड़ा।
1: योनो SBI UK ऑनलाइन एंड वाया द SBI UK ब्रांच।
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK, भाई उनकी तरफ से बार बार आपको याद दिलाया जा रहा है कि अगर पैसे भारत भिजवाना चाहते हैं ना, तो ये

0: सही समय है, अच्छा रेट है और सुविधाएं हैं सारी। तो आज का रेट मैं बता देता हूं, अगर आप भिजवाना चाहें तो। आज का रेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो दे रहे हैं, एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग 128.9 रुपीज, 128 रुपए और 90 पैसे। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाय यूजिंग द यूनो SBI UK मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Gold. Ye rishta kya
3: kehlata hai. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai. Every day at 7 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.

0: जाते हुए राही के आंचल में सिमटना क्या भाई। बात यह कि भाई वो ठीक है, गीत में तो ये कह रहे हैं शशि कपूर साहब पर पिक्चराइज्ड ये गीत ऐसा कह रहा है, लेकिन रियल लाइफ में शशि कपूर अपनी पत्नी के प्रति बड़े भाई वफादार रहे। उनकी पत्नी की डेथ के बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। बहुत से लोगों ने पूछा, जेनिफर कैंडल एक विदेशी महिला से भाई प्यार हो गया, विवाह हुआ, और जब पूछा था एयर पर नहीं पूछा लेकिन वैसे भी पूछा था, मगर आपने दूसरा विवाह क्यों नहीं किया, जबकि फिल्मी सितारे कई कई शादियां कर लेते हैं भाई एक के बाद दूसरी, लेकिन उन्होंने कहा कि वैसी कोई मिली नहीं। कैसी? जेनिफर कैंडल जैसी। उनसे उनके तीन बच्चे भाई करण कपूर, कुणाल कपूर और संजना कपूर, जो आजकल पृथ्वी थिएटर को देखती हैं। शशि कपूर हैं आर्टिस्ट ऑफ द वीक। उनकी फिल्मों के बहुत सारे गीत आपको सुनने को मिलेंगे इस सप्ताह।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: आइए सुनते हैं ये गीत, और इसमें भाई एक सवाल का जवाब छुपा है, क्योंकि शशि कपूर तो बन गए राजा साहब, शम्मी कपूर बन गए लाट साहब, और जब राज कपूर साहब से पूछा गया कि जी सबसे छोटा भाई राजा साहब, उससे बड़ा लाट साहब, तो सबसे बड़ा भाई क्या, आप क्या हैं?

0: good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और वैनो भाइयों, कुछ एक और संदेश आकर के जुड़ गए हैं हमारे भाई स्क्रीन पर, और उनमें हमारे भाई संदेश में कुछ साउथ हॉल ट्रेवल के बारे में आपको एक जानकारी देनी है आगे चल करके। फिलहाल तो ये जानकारी है जियो स्टार की ओर से, और इसमें कहा गया कि भाई देयर आर 20th सीजन ऑफ बिग बॉस इज बैक। 20वां सत्र जो है बिग बॉस का शुरू हो चुका है, होस्टेड बाय सलमान खान, एंड द शो एयर्स एवरीडे एट 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जियो हॉटस्टार स्ट्रीमिंग एवरी एपिसोड अलोंग विद लाइव 24/7 फीड फ्रॉम द बिग बॉस 20 हाउस। जियो स्टार इज नाउ ऑल्सो अवेलेबल एज एन ऐप ऑन स्काई टीवी। तो भाई ये जानकारी हमें आपको देनी थी। इसके अलावा कुछ और भी है और नहीं है?
0: ये है लाइका गोल्ड।
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

कहीं नहीं जा रहा हूँ भाई, अभी कहीं नहीं जा रहा हूँ, कार्यक्रम का समय बाकी है, कुछ गीत बाकी हैं आपके नाम करने हैं। अनिल कुमार हमें चंपावत उत्तराखंड में सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी पसंद का गीत भी शामिल कर दीजिए, आज पहली बार सुन रहा हूँ आपको। हाँ, पहली बार हो सकता है भाई, सुनते रहिएगा, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे गीत ढूंढ के लाया करेंगे, हम सुनवाएंगे आपको। वत्सला जी आपका संदेश मिल गया, वियाना में अनिल सोनी जी, सीजर फर्नांडिस साहब, आप सब

0: भाई हम अकेले बिल्कुल नहीं है, हमारे बहुत सारे हम सफर हैं, हमारे लिसनर्स, हमारे दोस्त साथी, हमारे प्रशंसक, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। नहीं जा रहे भाई, नहीं जा रहे, बोल दिया। मैं देख रहा हूँ कि आज जन्मदिन कौन मना रहा है भाई। फिल्मी सितारों के जन्मदिन तो बाली भाई ढूंढ के लाते हैं, लेकिन उनके अलावा भी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रसिद्ध होते हैं। जैसे कि आज 15 सितंबर को विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है। कौन है? बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं भारत के, इंजीनियर हुए हैं। एंड शायद आपको जानकारी हो कि आज के दिन भारत में इंजीनियर डे जो है उनके नाम से उनके लिए मनाया जाता है। इंडियन इंजीनियर स्कॉलर स्टेट्समैन एंड दीवान ऑफ मैसूर। एक ज़माने में भाई 1860 में वो पैदा हुए थे और अपने जीवन काल में उन्होंने अपने अध्ययन के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम किए। उनके ऊपर तो एक चिंतन प्रोग्राम में शामिल करना है, बहुत जल्द मैं सुनवाऊँगा आपको। लेकिन नाम इतना मुश्किल है, विश्वेश्वरैया, हमारे राहुल गांधी तो बोल नहीं पाए थे, अटक गए, कई बार उन्होंने रिपीट किया फिर भी नहीं बोल पाए। पर वही साउथ इंडियन इंजीनियर थे विश्वेश्वरैया साहब, विश्वेश्वरैया। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स कहें उन्हें, जहाँ भी हैं, अब तो दुनिया में नहीं हैं, लेकिन साहब ऐसा वैज्ञानिक जो है बहुत बहुत गुणी थे। आज जन्मदिन मनाने वालों में एक पॉलिटिशियन सुब्रमण्यम स्वामी जी का नाम है। सुब्रमण्यम स्वामी 1939 में आज ही के दिन जन्मे थे। और भाई मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स टू स्वामी जी। स्वामी जी एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो जिस पार्टी में है उसी पार्टी के विरोध में खुल के बोलते हैं, कोई डर नहीं। और मज़े की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के वो एमपी हैं, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। वो कहते हैं कि निंदक नेड़े राखिए, भाई क्रिटिक जो है वो हमारे करियर में, हमारे जीवन में सुधार लाते हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी बड़े मशहूर क्रिटिक हैं अपनी ही पार्टी के, दूसरों के, सोनिया गांधी और गांधी परिवार के तो कट्टर विरोधी हैं ही। उनसे यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में मुलाकात हुई, तो लंबी चौड़ी बातें हुई थी मेरी उनसे, बहुत दिलचस्प इंसान हैं। और भाई आज जन्मदिन मनाने वालों में एक और हमारे प्रिय मित्र, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू हुड्डा साहब। भाई रोहतक में जन्मे थे, इनका गाँव है वहाँ जो रोहतक जिले में। और इनके पिताश्री भी पॉलिटिशियन थे, इनके बेटे भी एमपी हैं आजकल, और ये तो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे ही हैं, बहुत काम किए इन्होंने। भाई मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू भूपी भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब रोहतक से। और अब भाई आपके घर में कोई, परिवार में कोई दोस्त रिश्तेदार जन्मदिन मना रहा हो तो उन्हें भी हमारी ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। Holiday breaks are brought to you by South Hall Travel. South Hall Travel याद दिला रहे हैं भाई, उनका संदेश है कि South Hall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact South Hall Travel today on 0208-574-8410. South Hall Travel is at all protected. Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM travelhubworld.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
1: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस।
0: All protected.
1: Visit travelhubworld.com.
2: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203 963-5757 to arrange your meeting.
3: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इन्विटेशन 29 सितंबर थी 5 ऑक्टोबर सुधी रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे फर्स्ट फ्लोर यूनिट 2 साउथ राइस्लिप HA40JS रोज कथा पछी महाप्रसाद पोथी यात्रा कपिल नारायण कथा कृष्ण जन्म गोवर्धन लीला रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों मा जरूर जोड़ाओ वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777-228-7509
4: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो एक्सपीरियंस द डिवाइन
5: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए
4: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है दिवाली स्टोरी द जर्नी ऑफ राम एंड सीता
5: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th of September
6: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो
5: Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Official TV partner, ZTV. An exclusive radio partner, Leica Radio Network. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
7: बिग बॉस में इस बार मिलेगा प्रधान और एक्स्ट्रा जीवन दान तथा जान
8: बिग बॉस सीजन 20 एवरी डे एट 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जिया हॉटस्टार एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वॉच अ लाइव फीड फ्रॉम द बिग बॉस हाउस एक्सक्लूसिवली ऑन जिया हॉटस्टार
9: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
10: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
11: The cycle of love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true-life adventure.
12: I left behind everything I knew.
11: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
12: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
11: The cycle of love. In cinemas nationwide from September the 18th, book now at thecycleoflovefilm.com.
13: Sonatours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off or lose the discount after. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
14: London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time, legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia छोटे मिया दिस दिसंबर
15: मैं निकला ओ गट लेके आए हो मेरे
14: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
16: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our 4 stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
17: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: गुड आफ्टरनून हम मेहरबानियों का तकाजा ना करेंगे देखेंगे किस तरह वो हमें प्यार करेगा कायम उसी ने की हैं हदें हिजरो वसल की इन सारी हदों को वो खुद ही पार करेगा होगा मिलन का दिन भी उसी को नसीब जो रातों को जाग जाग कर इंतजार करेगा देखेंगे किस तरह वो हमें प्यार करेगा वादा करेगा इरादा करेगा कुछ ज्यादा करेगा

0: हाथ कभी नहीं छूटेगा, साथ कभी नहीं टूटेगा। क्या बात है भाई। एक हमारे मित्र हैं पवन जी। पवन भाई, आपने बहुत सुंदर आयोजन किया। वो बागेश्वर धाम से बागेश्वर सरकार आए थे, तो भाई उनका बहुत बड़ा आपने कामयाब आयोजन किया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को भाई सिटी पवेलियन में आपने उनका दर्शन करवाया, उनसे का प्रवचन सुनवाया। थैंक यू वेरी मच। पर एक और पवन है जो चलते फिरते पवन है, हवा की तरह से, वो पवन की तरह से लहराते हुए, गाते हुए और शायरी बनाते हुए सफ़र करते हैं, ट्रक चलाते हैं बड़ा, और उसे लेकर के आप जा रहे हैं। तो जाते जाते उन्होंने लिख के भेजा है, बर्मिंघम का गेड़ा शर्मा जी, ये हरियाणवी में गेड़ा भाई कहते हैं दौरा, वहाँ का फेरा लगा रहे हैं। बर्मिंघम का गेड़ा शर्मा जी, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा शर्मा जी, जिंदगी का हो कुछ भी ऐसा ही है फेरा शर्मा जी, पर शो तेरा बना देता है दिन ये मेरा शर्मा जी। भाई छोरे पवन, अगला गाना तेरे नाम आवेगा, सुनते रहना और गाड़ी ट्रक ध्यान से चलाना भाई, सावधानी से। बहुत कीमती है जिंदगी और बहुत प्यारे लिसनर हैं आप हमारे। थैंक यू।
1: The hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Like a gold.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: I'm sure you want to send money to different countries, लेकिन let me tell you the rate first. एक पाउंड के बदले विभिन्न देशों के लिए लैम्फाई के रेट्स हैं। बांग्लादेश टका जो है वो एक पाउंड के बदले दे रहे हैं 165.93, श्रीलंकन रुपए 444.52, पाकिस्तानी रुपए 373.75, अफगानी 87.62 एंड इंडियन रुपी, भारतीय रुपए एक पाउंड के बदले इस समय वो दे रहे हैं 129.31।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: LIKA Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: सोने का भाव, अरे साहब गोल्ड, इस समय जो रेट चल रहा है 102.15 पाउंड्स पर ग्राम बिक रहा है सोना।
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: नीसा नासिर, लाइक अ गोल्ड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में। मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे से 10 बजे रात बिग शो में जारी रहती है। बिग शो सुनना भूलिएगा मत।
1: लाइक अ गोल्ड इज 5। This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.

0: तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें तो पागलखाने में होना चाहिए था।
1: मैं तो आई थी यहाँ छुट्टियाँ बिताने को, मुझको बिस्तर पे हाय

0: What a song from Deewar 1975 के आशा भोसले और किशोर कुमार जी, आर डी बर्मन का संगीत, साहिल लुधियानवी की लिरिक्स।
1: Gem In Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
2: This is Like a Gold across Greater London. This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
5: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
4: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
5: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
6: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो।
5: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन। ऑफिशियल टीवी पार्टनर ZTV एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
2: Lights on, shutters up, staff ready.
1: But today's customers don't start on the high street.
2: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
1: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
2: They walk into your competitors.
1: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
2: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
3: माया भाईनी मौजवाणमा थई जाओ रेडी माँ कृपा फाउंडेशन्स यूके प्रेजेंट्स भव्य डायरो माया भाई आहिर जयश्री भोजविया अने निर्मल सिंह झाला साथे 26 सितंबर 2026 ना रोज
4: वेन्यू फर्स्ट फ्लोर यूनिट 3 10 स्टोन फील्ड वे साउथ राइसलीप HA40JS
3: टिकट्स 30, 40 अने 50 पाउंड लाइट रिफ्रेशमेंट इंक्लूडेड
4: बुकिंग माटे कॉल करो रश्मि शाह 0772-287-509
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
6: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100 Atoll Protected.
7: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
8: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
9: Sonatours.co.uk special offer holiday of a lifetime with amazing discount. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours now on 0208 951 0111.
10: Across London, this is Bally Brambat on Like a Gold.

0: ये है 1998 का गाना, 1998, एंड आगे आप सुनेंगे गाना 1962 का। ये जो म्यूजिक था वो जतिन ललित का था, और नेक्स्ट गाना सुनिएगा।
1: Across London, this is Ballybrambat on Like a Gold.
0: रोशन का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी की लिरिक्स।

0: थाना सिमिलरिटी, तुम पर हम है अटके यारा, एंड उसके बाद आगे बार बार तो है क्या समझ आए, सिमिलर ट्यून्स। सो एक 1962 का जो रोशन जी का संगीत था, एंड दूसरा था कौन से थे, जतिन ललित, इन्होंने प्यार किया तो डरना क्या 1998 में, कविता कृष्णमूर्ति और कम कुमार सानू का गीत, लेकिन इन्होंने इन अ सटल मैनर they copied this, no copy copy nahi bolte, they got inspired by this particular tune. I shouldn't be harsh like that, they are wonderful composers. I mean Jatin and Lalit, of course. Main hu Bali Brahmbhatt on Like a Gold with yes, show sponsored by Jaimin Foods, and through Jaimin new products are going to come in. And aaj ek bada din hai, is bade din mein हम कहेंगे मिच्छामी दुकड़म, फॉरगिव अस इफ वी हैव मेड एनी मिस्टेक्स और वी हैव हर्ट यू इन एनी मैनर. सो फ्रॉम मी टू यू आई वुड से मिच्छामी दुकड़म.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can get up to 128.9 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNC supply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Jaimin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 PM on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar.
4: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय.
5: जॉइन महाराजा टूर्स ऑन अ 14 नाइट कैरिबियन क्रूज डिपार्टिंग 6 दिसंबर विद डायरेक्ट वर्जिन फ्लाइट्स फ्रॉम हीथ्रो टू बारबेडोस. खूबसूरत बीचेस, सनशाइन और 8 अमेजिंग कैरिबियन आइलैंड्स आपका इंतजार कर रहे हैं. प्राइसेस फ्रॉम जस्ट £1,499

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
3: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉक-इन्स का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर, यूनिटेड, ट्रेडर वेम्बली, ग्राउंड फ्लोर, 87 ईलिंग रोड, वेम्बली, HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: एक बात याद आ गई मुझे. मेरा एक परिवार है और मेरे दोस्तों का भी एक परिवार है. मेरे एक दोस्त अरविंद शाह और हमारी प्यारी बहन मीना बहन 20 अप्रैल को प्रफुल्ल भाई, हमारे प्यारे प्रफुल्ल भाई, ही अनएक्सपेक्टेडली, इट वॉज अ वेरी अनटाइमली डिमाइस ऑफ प्रफुल्ल भाई. लिविंग ब्रीदिंग अनइफेक्टेड बाय एनी लॉन्ग टर्म इलनेस, जस्ट वेंट विद इन 30 मिनट्स ऑफ एक्सपीरियंसिंग चेस्ट पेन. व्हेन ही पास्ड अवे, वी वॉन्ट टू से You will never be forgotten. And today, we are remembering Prafull Bhai, a doctor in Westlands, Nairobi, in the 70s, when Arvind Bhai was a lot younger and someone used to go see for any illness, passed away this weekend, last weekend too. Name was Dr. Kanti. Gentleman, 86 years old, according to the release details. Prayers at Potter's Bar for him tomorrow, 7:30 p.m. onwards. So here is a song remembering Prafull Bhai.

वही सुरीली आवाज पंकज उदास जी की विद अनुराधा पौडवाल, फिल्म बहार आने तक 1990 की फिल्म। नेक्स्ट सॉन्ग इज फिल्म बदतमीज। रफी साहब ने इतना प्यारा गीत गाया है, सुनिएगा।

0: What a song, evergreen song. कौन सी फिल्म है आपको बताना पड़ेगा क्या? Yes, आशिकी, that great film. You can never miss out these particular songs. They will always remain evergreen. मेरे पास तीन तीन कैसेट्स लेकर मैं घूमता था उस जमाने में, एक घर पे, एक गाड़ी में और एक जेब में, वॉकमैन में. जब भी कोई दोस्त मिलता था, यार ज़रा देना सुनने के लिए, और ले जाते थे. मैंने कितनी खरीदी, सो मैनी आशिकी की कैसेट्स, क्योंकि वो मतलब इट वॉज द म्यूजिक ऑफ द सेंचुरी देखा जाए तो. नदीम श्रवण क्या म्यूजिक दिया था, कुमार सानू, ऑल द सिंगर्स, दे सेंग देयर हार्ट्स आउट. एंड आज हम सुना रहे हैं आपको ऑन लाइक अ गोल्ड. मैं हूं बाली ब्रह्म भट्ट. On Like a Gold with Gold Afternoons, sponsored by Jaimin. And don't forget, अभी जो सीजन शुरू हुई है, पर्युषण, नवरात्रि, दिवाली, इसमें जो हैम्पर्स मिलते हैं जैमिन के, there are special foods you can get from Jaimin. And I shall be announcing some of the special foods that are coming into the market through Jaimin. This show is sponsored by Jaimin. आगे जाते हुए और भी गाने मैं सुनाऊंगा. Our artist of the week is Shashi Kapoor. और मैंने एक इतना अच्छा गाना चुना है जिसके अंदर वो एक क्लब, नाइट क्लब में बैठ के दाढ़ी हुई हुई है, I think दिल का मारा हुआ, पियानो बजा रहा है और गाना गा रहा है, और संजीव कुमार कम्स इन विद द हीरोइन. और वो गाना कौन सा होगा आप सोचते रहिए. आर डी बर्मन का संगीत है, आनंद बख्शी की लिरिक्स है. सो सुनते रहिएगा और लुत्फ उठाते रहिएगा.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can get up to 128.9 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Hey, Em, still up for that hike?
3: Yep, count me in.
2: Or we could check out that new brunch place.
3: Sounds good.
2: Or what about...
3: Let's do it.
4: When you feel your best, you're up for anything. With Boots trusted healthcare advice, services and treatments, you'll stay on top of your health, ready to take on whatever the day throws your way. And with buy one, get the second half price on healthcare, including cough and cold treatments, you can really afford to.
5: Give it some Boots.
4: Offer ends 3rd of November 2026. Mix and match across selected range. Cheapest item half price, subject to availability.
6: Gold Afternoons.
7: Gold Afternoons.
6: Proudly sponsored by Jaimin Foods. The authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
1: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
8: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
9: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
8: ये तो बताओ, कोई पता चला?
9: गुरु गुरु,
10: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
8: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
11: शीघ्र शीघ्र
10: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर.
12: टू बुक कॉल 0208-514-5400. Online at Eventbrite.
13: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
14: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं. फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
15: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो,
5: एक्सपीरियंस द डिवाइन।
7: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
5: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
11: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
15: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो।
11: Book now on DiwaliStory.com before they are gone.
16: Official TV partner, Zee TV. An exclusive radio partner, Leica Radio Network.
17: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
18: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
17: Southall Travel.
18: Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
17: Southall Travel can take you there.
19: Southall Travel. At all protected.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर विम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर विम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड विम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
2: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
4: Get ready, cricket fans. The T20 battle is on. Team India takes on Afghanistan in three explosive T20 internationals from 13th to 17th September. Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 PM exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now.
5: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
6: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
7: Like a Radio Network. Proud hospitality partner.

क्या गाना है ना, फिल्म बहार का 1951 एंड 1961, 10 इयर्स लेटर इट वाज रफी साहब सिंगिंग इन द फिल्म बॉयफ्रेंड. एंड नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स नन अदर देन सैंडी शाह कमिंग. यस, सैंडी शाह इज गोना बी आफ्टर मी. एंड नाउ on Laika Radio Midlands, it's going to be Raj Patan. Enjoy their shows from 4 to 7. I shall see you tomorrow. Thank you for all your lovely messages. Bali Brahmbhatt ka namaskar. Ijazat.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
2: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
1: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. Diwali Story, The Journey of Ram and Sita.
2: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September. Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Official TV partner, ZTV. An exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
4: गारंटेड.
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
4: फोन 02085748410.
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
5: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
6: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
7: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
6: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
8: मीनार ज्वेलर्स. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 02208767627.
9: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocenter.org. Assuming you want to get noticed.
10: तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो.
11: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
12: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
13: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Leica Gold. Leica Gold is 5.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
4: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है. अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575. केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD. प्लीज कॉल ऑन 07466997575.

0: Every day at 8:30 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट रागासन.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉक-इन्स का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
2: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
3: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
2: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
2: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
0: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
1: भक्ति संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो 18 सितंबर को बिग थिएटर हेज में। एक ही दिन में दो ग्रैंड शोज, दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। प्रभु श्री राम की लीला, हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव। 18 सितंबर बिग थिएटर हेज। टिकट्स बुकिंग के लिए विजिट करें shriramleela.theshowmanstudio.co.uk।
4: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
5: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
4: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
0: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour, from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203 773 633 or visit mantraholidays.co.uk.
6: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
7: Hey, Prasanna Mahalakshmi kehti hai, bolo prem ki bhasha.
8: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
9: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
0: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: गोल्ड। ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम।
2: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 ऑक्टोबर सुधी रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी। कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा। वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे फर्स्ट फ्लोर यूनिट 2 साउथ राइस्लिप HA40JS। रोज कथा पछी महाप्रसाद पोथी यात्रा कपिल नारायण कथा कृष्ण जन्म गोवर्धन लीला रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों मा जरूर जोड़ाओ। बधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777-2287-509।
1: वॉटफुट में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
0: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
1: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
0: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट। कॉल 0192-322-7274। बुक योर टेबल टुडे।
3: London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
5: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
4: ये तो बताओ कोई पता चला?
5: गुरु गुरु
6: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
4: साधु तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। सुबह से शीघ्र
6: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th of November।
3: टू बुक कॉल 0208-514-5400। Online at Eventbrite.
7: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड।
9: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
10: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta, a ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
11: SonaTours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of September and get up to $300 off or lose the discount after. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
12: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
13: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। Leica Radio और Leica Gold आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@leicaradio.com।
14: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics.
15: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with

0: Gold Drive with Sandy Shah. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Pound's getting 129.34 Indian rupees, 87.56 Afghan Afghani, 373.88 Pakistani rupees, 165.84 Bangladeshi taka and 442.53 Sri Lankan rupees.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: LEICA Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold trading at £102.20 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com. Or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: अनीसा नासर,
4: हाँ जी,
1: की हाल है तेरा?
4: बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड।
1: दिन वधिया लंघिया
4: जी, थोड़े सवेरे दर्शन नहीं हुए, फिर भी दिन वधिया लंघिया। हुण शाम दा पता नहीं थोड़े दर्शन हो गए ने, किस तरह दी लंघदी है।
1: बड़ी लंबी सुट दी है वैसे, कोई गल नहीं। क्या जसा लंघेगा, क्यों नहीं लंघेगा? अच्छा,
4: पता नहीं, हुण मैं ते हुण देखना पेगा ना।
1: वो ते तेरे उत्ते डिपेंड होते, तू तीन घंटे च की करतूतां करनी है।
4: I'll do nice kartoot.
1: There you go. So din vadhiya langega.
4: Inshallah.
1: There you go. Ye ya wo.
4: Haan ji.
1: The first song, Teri Meri Prem Kahani from Pigalta Asman. Ya Jaane Man
4: Tum Kamal Karti Ho.
1: Haan te main gal vi nahi move
4: kardi. Te ohi gaana hai na, mainu pata lag gaya.
1: Te main koi aur gaana kehnda fir.
4: Nahi. Ho hi nahi sakda, Shashi Kapoor ji di gal ho rahi
1: hai. Yaad rakhiya, show mera hai ke tera nahi hai.
4: Acha? Fir hun kal to aap hi karo.
1: Anisha da vote utthe pae gaya. मेरा वोट जाना सी जाएगा, हैज टू बी जाने मन तुम को।
4: यस, ही एग्रीड।
1: एंड द नेक्स्ट सॉन्ग हैज वन व्हिच इज फैबुलस। आई एम वेरी ग्लैड द नेक्स्ट सॉन्ग, थैंक यू टू एवरीबॉडी हुज वोटेड, वेरी वेरी काइंड ऑफ यू।
4: हैव यू गॉट 2 सेकंड्स?
1: आई हर्ड
4: यू वेंट फॉर हेयर मसाज कहना चाहिए एट द वीकेंड। हाउ वाज इट?
1: इट वाज वेरी गुड बिकॉज़ आई हैव नेवर सीन सो मेनी वुमेन जेलस ऑफ माय हेयर स्टाइल।
4: Jealous or?
1: Sadke swa.
4: Really?
1: Sadke swa. Sandy, well, itni khubsurat reshmi zulfe tumhare paas kahan se aayi?
4: Kahan se aayi? Wah ji wah. Aap.
1: Lekin maine secret nahi bataya unko.
4: Bahut acha kiya.
1: Kyunki unhone pucha ki shampoo kaun sa use karte hain. Main wahan bata nahi sakta kyunki hum kuch aur promote kar rahe the.
4: Oh no.
1: Unko batana tha ki main use karta hu wash and go. वधिया तो वधिया।
4: ओह सही बनने हुए। आई वाज लुकिंग एट द पिक्चर्स एंड वीडियोस यू गाइस पोस्टेड, इट वाज अमेजिंग, इट वाज रियली फन, इट लुक्ड।
1: हमारी जो ब्रेकफास्ट की गर्ल है, उसकी हेड की मसाज मैंने की थी।
4: अच्छा,
1: 5 दिनों से डबल हाथ धो रहा हूँ मैं।
4: वो ऐसे आप लोग बैठे हुए थे जैसे गांव में वो लोग बैठते हैं ना जुए निकालने के लिए, पहले एक फिर दूसरी।
1: तुम्हें लगता है मेरे सर में जुए हो सकती हैं?
4: नहीं, अब तो बाकी लोगों की तो हो सकती है। आई डोंट नो लिसनिंग
1: कुछ मैं उड़ी तेरे वाल चेक करना जान तो पहले। Have a lovely evening. Anissa's next. I shall talk to you tomorrow. I hope if you've enjoyed it, please join me tomorrow. Bye-bye for now.
0: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: क्या बात है, कितना प्यारा फरमाइशी गीत है। मेरा मतलब है आप में से किसी ने फरमाइश नहीं किया, लेकिन गीत में फरमाइश की जा रही है ना, मुझे 9 लाख मंगा दे। सोने का भाव चेक किया है आपने?
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: 1 lakh बनाना मुश्किल है, 9 लाख। तो आपको बता दें कि your £1 in British sterling today can get you up to 128.9 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online या फिर SBI Yono mobile app के जरिए। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposits.

इन जुल्फों में उलझ उलझ कर कई मुसाफिर भटके, हो गया तिलका पुर्जा पुर्जा लगे पचासी चटके। तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला, रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला।

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आ जा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके। हट तेरा।

पास बुला ले, वहीं पे मेले लग जाए, तू देखे जहां पलक के हो गया दिल का पुर्जा, पुर्जा लगे 85 झटके, हो तेरा

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और भी कल तक जिनका रंग नशीला, अंग नशीला और पता नहीं क्या क्या बताया जाता था, उनके लिए कहा जाता था, कैटरीना कैफ की बात कर रही हूँ. आज एक तस्वीर उनकी वायरल हो रही है और उसमें उनको पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है, यहाँ तक कि उनके हस्बैंड विकी की उनको माँ से जो है वो क्या कहूँ तुलना की जा रही है कि वो जी अपनी हस्बैंड की माँ लग रही हैं, ये लग रही हैं, वो लग रही हैं. हम लोग क्यों इतने जालिम हैं यार, हम लोग इतने बेदर्द क्यों हैं, मतलब हमें इस तरह की तनकीद करके क्या मिलता है. वक्त के साथ अगर औरत का रंग रूप बदलता है तो ये तो एक नेचुरल फैक्ट है भाई, बदलता है तो बदलता है. अब इतना क्रिटिसाइज करना इस बात को लेकर मेरे तो समझ में नहीं आ रहा भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एनीवेज, लीजिए हम आपको एक जरूरी इतला पहुंचा देते हैं. ये इतला तो आपने सुबह से सुनी रखी होगी और ये जो है ये मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप इसे मिस ना करें. फाइनल फ्यू डेज टू गो टू दिवाली स्टोरी ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क. इट टेक्स प्लेस एट ओवो वेम्बली अरीना ऑन संडे 27 सितंबर. डोर्स ओपन एट 4:30 PM विद अ स्टूडेंट प्री शो फ्रॉम 5 PM टू 5:45 PM. याद रहे. और फिर जो मेन परफॉर्मेंस है वो शुरू होगी 6:15 PM से और ये रहेगी 9:30 PM तक जारी. टिकट्स का बंदोबस्त कीजिए diwalistory.com के जरिए.
0: दिस इज लाइक अ गोल्ड.
2: और ये भी बताते चलें भाई किसने सही और किसने गलत जवाब अब तक पहुंचाए हैं हम तक. तो सबसे पहले मिसेस के, आज तो आपने कमाल कर दिया. सबसे पहले आपने सही बूझा, बिल्कुल सही, यही जवाब चाहिए था. फवाद जी, मीनाक्षी जी, मकबूल जी, सरोज जोशी जी, सरोज जी बड़े दिनों के बाद आपने मैसेज भिजवाया. मंजीत संगर जी, मेरी बहुत प्यारी रेगुलर लिसनर एंड कंट्रीब्यूटर, आपका जवाब भी सही है. अमनदीप कौर जी, आपसे भी शिकायत है, बहुत दिनों के बाद आपने आज मैसेज भेजा. वीना जी, लुबना जी, विजय गुडोरी जी, दीनी जी, अंसर जी, अंजुम जी, प्रतिभा जी, चौधरी फरीद अहमद जी, अमिता जी, गुल जी. गुल जी बिल्कुल आपने वही बूझा जो मुझे चाहिए था, वही बात कर रही हूँ मैं. सपना जी, आपका भी जवाब सही है. और अगर नहीं सही तो सबसे पहले बताएं किसका नहीं सही. अब तो घर में भी आप चिल्ला रहे होंगे मनु जी का नहीं होगा. हाँ जी, मनु जी का ही सही नहीं है. ताहिर जी का भी सही नहीं है. रुखसाना जी नहीं. उमर जी, आप तो बिल्कुल ही पता नहीं कहीं और ही चले गए. फरजाना जी, पूनी जी, निमी जी, अब बदलने से कुछ नहीं होगा. हरप्रीत जी वैंकूवर में सुन रही हैं, आपने भी पहले गलत जवाब भिजवाया, आप उसे ठीक करने की कोशिशों में हैं. तो पहला सवाल, पहला जवाब जो सही हो या गलत हम वही एक्सेप्ट करते हैं. उल्लास जी और बिजिंदर जी, आप भी वही कर रहे हैं, आपका पहला जवाब गलत था, सॉरी. अब दूसरे को सही नहीं मान सकती. शकीला जी, वेल डन लड़की. मेरा मतलब है गलत जवाब भिजवाने के लिए.
3: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.

0: कुछ लोग पायल में ऐसी खोई कि पायल से बाहर ही नहीं निकले। मतलब पायल के ही डिफरेंट नाम मुझे भिजवा रहे हैं। इसको झांझर भी कहते हैं, एंकलेट भी कहते हैं। अच्छा लेकिन वो कॉमन नहीं है। लीजिए दोस्तों, तारिक राहील जी ने भी बूझ लिया, फरमाते हैं, तुम्हारा हुस्न आराइश तुम्हारी सादगी जेवर, तुम्हारा हुस्न आराइश यानी कि सजना संवरना, तुम्हारा हुस्न आराइश सजावट कहना चाहिए, तुम्हारा हुस्न आराइश तुम्हारी सादगी जेवर, तुम्हें जरूरत नहीं सजने और संवरने की। लेकिन आपको ये बताने की जरूरत मुझे है कि कैच लाइव एंड एक्सक्लूसिव क्रिकेट एक्शन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान ऑन जियो हॉटस्टार। 3 वनडे इंटरनेशनल्स फ्रॉम संडे 13 सितंबर अंटिल थर्सडे 17 सितंबर फ्रॉम 2:50 PM। डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू द जियो हॉटस्टार ऐप नाउ। जियो हॉटस्टार जो है ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Okay, Nico, got some traffic up ahead, so let's box, box, box into BP to fuel up and grab a coffee.
3: Even F1 drivers like Nico Hülkenberg do everyday driving. That's why the Audi Revolut F1 team recommends BP Ultimate with active technology.
2: Grab us a sausage roll while you're in there. Nico? Hello?
3: Choose BP Ultimate for up to 375 more miles per year. Distance may vary due to factors like driving style, vehicle, load and weather. Based on continuous 6,400 miles per year use. See bp.com/ultimate.
1: This is Anissa Nasir with The Big Show.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
5: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट TravelHubWorld.com।
6: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
7: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
8: Dubai is the place. 11,
7: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
8: Danube 11, 11. Danube Properties. 11.
9: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
10: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉक-इन्स का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
11: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
12: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
11: Get your free tickets. Book now using the promo code LIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
12: Exclusive media partners LIKA Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow.
1: Get ready, cricket fans. The T20 battle is on. Team India takes on Afghanistan in 3 explosive T20 internationals from 13th to 17th September. Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 PM. Exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now.
13: SonaTours.co.uk. 13 days Vietnam and Cambodia departures every month September to December. Get 100 off if you book this month. Call Sona Tours now on 0208 951 0111.
14: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
15: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler. Get ready for winter.
16: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold.

0: क्या बात है, मेरी चीची दा छल्ला माही ला लिया, घर जाके शिकायत लावांगी ते घर वालियां कोलों कुट भी खावांगी। क्या प्यारा गीत है, बहुत ही प्यारा गीत है। निलेश जी आपका जवाब भी सही है और एक थीम बहुत बार रिपीट होती है। निलेश जी कभी तवज्जो दें तो पता चले ना, फुटबॉल में खोए रहते हैं आप। और सोबत खान जी आपका भी जवाब बिल्कुल सही है। गीता हर्षित जोशी जी वेल डन। और यहाँ पर भी एक इतना प्यारा मैसेज देखा मैंने, फिर खो दिया। अशोक बाली जी और ऋतु जी आपने भिजवाया है और आपने कहा मैंने चैट जीपीटी से एक हिंदी का शेर जो है वो उर्दू में ट्रांसलेट करके आपको भिजवाया है। मैं ज़रूर अभी दोबारा से ढूंढती हूँ उसको और सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो वेरी मच।
1: दिस इज द Leica रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta hai 87.4 Afghani, 373.7 Pakistani rupees, 129.3 Indian rupees, 165.8 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £102.20 per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: और अब देखिए चैट जीपीटी ने क्या किया है। आपने लिखा कि ये मैंने हिंदी वाला जो है उर्दू में ट्रांसलेट करवाया है। तुमने कभी दलदल पर कोहरे के मकान देखे हैं? तुमने कभी दलदल पर कोहरे के मकान देखे हैं? हमने तो कांटों पे भी होंठों के निशान देखे हैं। वाह।
1: बिगेस्ट इंडियन एंड पाकिस्तानी क्लासिक्स विद अनीसा नासिर।
3: झुमका गिरा रे हाय।

0: हाँ जी, क्या हुआ फिर? वही जो होना था, तोची जी, सईदा जी, दिनेश पोपट जी और दिलीप सरोज जी, आपके भी जवाब बिल्कुल सही हैं। आज की थीम में ज्वेलरी शामिल रही। कुछ लोग पायल से आगे ही नहीं बढ़े, लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने कोशिश की। बट साहब बेहद शुक्रिया, सुपरस्टार तो आप लोग हैं भाई, आप ही की रोशनी से जगमगाता है स्टूडियो, बेहद शुक्रिया। अगला गीत हम ले जाकर खबरों तक, और खबरों के उस पार हम करेंगे आपका इंतजार।
1: Like a Radio Network, broadcasting across Greater London.

0: और ये गीत ऐसा गीत है कि इसे सुनकर जिसने शायद कभी भी जिंदगी में प्यार करने का ना सोचा उसका भी मन मचल उठता है कि दुनिया में एक शख्स तो ऐसा हमारा हो, दुनिया में एक शख्स तो ऐसा हमारा हो, पूछे जो हमसे हाल तो हम सच बता सके।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today can get you up to 128.9 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online ya phir SBI Yono mobile app ke zariye. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.state.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
4: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
3: डेजर्ट सफारी,
4: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
3: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
4: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
5: साफो ट्रेवल, at all protected.
6: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 02087672142.
7: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
8: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
9: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मैंने हर बार तुझसे मिलते वक्त तुझसे मिलने की आरजू की है और तेरे जाने के बाद भी मैंने तेरी खुशबू से गुफ्तगू की है। क्या प्यारा गीत है, बेहद शुक्रिया पसंदीदगी के लिए। और अभी अभी मैंने साजिद रहीम जी का एक शेर आपके साथ शेयर किया, कुछ लोगों को बहुत ही अच्छा लगा तो उनके लिए रिपीट कर देते हैं कि दुनिया में एक शख्स तो ऐसा हमारा हो, पूछे जो हमसे हाल तो हम सच बता सकें। वरना यही कहते ना, हाँ जी बस ठीक है जी, बस जी ऊपर वाले का करम है, सब कुशल मंगल, अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह वगैरह वगैरह, चाहे अंदर से कुछ कितने ही उबाल ना उठ रहे हो। अब गुल जी को लीजिए, गुल जी बिना मतलब हजम नहीं होती उनसे मेरी कही हुई कोई बात, कहती हैं जिंदगी में ऐसा शख्स जरूर होना चाहिए, जिंदगी में ऐसा शख्स जरूर होना चाहिए निसा, जो हाल पूछे तो बंदा रोना पिटना डाल दे। सही कहा आपने। और कहती आखिरकार वो घड़ी आ ही गई, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जो मैंने ठीक करवाने के लिए दी थी।
0: ये है Leica Gold. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: और ये हॉलीडेज की घड़ी मेरे लिए तो बड़ी दूर है खड़ी, लेकिन आप लोग जरूर जा सकते हैं। Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact कीजिएगा Southall Travel को आज ही 0008574 8410। याद रहे Southall Travel is at all protected.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
3: Leica Gold.
4: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.

0: शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। कमाले जब्त का ये आखिरी हुनर भी गया, कमाले जब्त का ये आखिरी हुनर भी गया। मैं आज टूट के रोया और उसके घर भी गया। क्या बात है, आप भी कमाल करते हो भाई। और मिसेस के, बेहद शुक्रिया, आपको जोक्स अच्छे लगते हैं, खासतौर पर जब मैं बताती हूँ तो। क्या बात है। एक बात बताऊँ आपको, कहते हैं शगुफ्ता दिल बहुत टूटे हुए होते हैं अंदर से, शगुफ्ता दिल बहुत टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफे याद रहते हैं। बड़ी गहरी बात है। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट। जी हाँ, आपको बता देते हैं लाइका एक्स्ट्रा न्यू एपिसोड के बारे में, जिसे होस्ट किया है खुश ने, और बात करेंगी वो मिनाल सांबरे से अबाउट मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट रेजिंग डेट्स। तो आप ये एपिसोड्स देख सकते हैं, बल्कि हर एक एपिसोड देख सकते हैं। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट जो है वो अवेलेबल है ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। Leica Extra is here. Anissa Nasir with The Big Show. Weeknights from 7 PM. Leica.
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट travelhubworld.com।
3: The Bhajan Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners, Leica Radio Network. No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
5: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
4: Get your free tickets. Book now using the promo code LAIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
5: Exclusive media partners LAIKA Radio. Sponsored by Sari Pleeta, Shana Foods, Begin and Regrow.
6: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
7: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
6: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
8: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
9: Sonatours.co.uk special offers with amazing discount. 16 days China for 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours on 0208-951-0111.
10: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Feel Good Classics with Anita.

0: दुनिया को रेशा रेशा उधेड़ें रफू करें, दुनिया को रेशा रेशा उधेड़ें रफू करें। आप बैठ थोड़ी देर, जरा गुफ्तगु करें। अच्छा तो अब यार वो उस शेर में तो बहुत सारे लोग फंस गए। शहजाद भट्ट जी कह रहे हैं दुखों और डाकू और डॉक्टर के सामने सच ही बोलना चाहिए। ये डाकू कहाँ से आ गए? बट सब ठीक जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं आप। और मैं भी अब ज़रा ठीक हो जाऊं और आपको बताऊं कि प्रोग्राम के इस हिस्से में जो उल्टा पुल्टा हम खेलते हैं, गुल जी कहती है मेरे को तो सीधा गाना नहीं बुझिया जाता, तो तुम उल्टा पुल्टा मेरे को उम्मीद करते हो कि मैं सीधा करके दसांगी। अच्छा आप मत बताइए, बस इंजॉय कीजिए, कोई और अच्छा सा शेर या जोक भिजवाइए, हम सबके साथ शेयर करेंगे। राइट, तारिक साहब ने बड़ी प्यारी बात लिखी, कहते हिसाब में मतलब मैथ्स में अगर दो में से एक निकालो तो एक बचता है, यानी एक माइनस वन, दो में से निकालो एक तो एक बच गया। और मोहब्बत में दो में से एक निकल जाए तो एक नहीं बचता। तारिक साहब आज आप मतलब बड़े वो तपे बैठे हैं, खैर है। और वो मेरे जोक पर तो नहीं, मेरे शेर पर भी आपने कहा अच्छा शगुफ्ता, सच्ची बताएं किसी पुरानी गर्लफ्रेंड का नाम तो नहीं था?
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: अभी बताती हूँ उल्टे पुल्टे के बारे में। पहले आपको बता दूं कि 1 ब्रिटिश पाउंड आज आपको दिला सकता है 129.3 इंडियन रुपीस, 87.5 अफगान अफगानी, 373.7 पाकिस्तानी रुपीस, 165.8 बांग्लादेशी टाका एंड 1.3 US डॉलर।
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Punjabi tadka se pehle gold ka tadka. The gold is currently trading at £102.20 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: और भाई सबसे पहले हमेशा ही की तरह मोस्ट ऑफ द टाइम कमल शिवनानी जी आप ही होते हैं हमारे मास्टर, जिसको कहते हैं किंग, राजा ऑफ द आवर। और आज भी आपने अपना रिकॉर्ड जो है उसको बनाए रखा है, बिल्कुल सही बूझा आपने गीत को। उल्लास जी, गीता हर्षद जोशी जी, यारे से करसन पिंडोरिया जी, तोची जी, बस इतने ही सही जवाब बात मुझ तक पहुँचे, लेकिन एक गलत जवाब भी पहुँचाया है सईदा जी ने मेहरबानी करके, ताकि सही जवाब भिजवाने वालों को नज़र ना लग जाए। तो सईदा जी ट्राई करने के लिए बेहद शुक्रिया। अभी कुछ ही देर में पंजाबी तड़के के बाद हम आपको वो गीत सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि स्पर्स और वेस्ट हैम की दुख भरी दास्तान मुझे विजय गुरूरी जी सुना रहे हैं, और आर्सनल और इप्सविच की जो कि लीग मैच है अकॉर्डिंग टू हमारे नीलेश जी, वो बल्ले बल्ले कर रहे हैं। मेरा रोना हमारे लिए रह गया विजय जी।
2: लंदन, मिडलैंड्स, मैनचेस्टर, दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क। पंजाबी तड़का विद अनीसा।

0: क्या मजेदार पंजाबी तड़का था। सोबत खान जी आपके भी नाम गया और हमारे शहजाद भट्ट जी आपके भी नाम गया। हमारे राजा ऑफ द आवर ने यानी कमल शिवनानी जी ने एक जोक भिजवाया है और मिसेस के जरा करीब आ जाइए ताकि आप ध्यान से सुन सकें और हंस सकें। लिखते हैं कि एक बंदे ने दूसरे से कहा, एक नई चीज आई है जो ना अगर हम उसके सामने झूठ बोलें तो एकदम पकड़ लेती है। मैं ये जोक पढ़ के पहले तो इतनी देर हंसी हूँ और फिर मैंने कहा शायद अब मैं ऑन एयर नहीं हंसूंगी, आफ्टर ऑल आई एम प्रोफेशनल, बट साबित हुआ कि आई एम नॉट। तो एक बंदे ने दूसरे से कहा कि एक नई चीज़ आई है, अगर हम उसके सामने झूठ बोलें तो वो एकदम पकड़ लेती है। जवाब मिला, मेरी तो कई साल पहले उससे शादी हुई थी।
1: Anisa Nasir, live across Greater London with the Big Show. This part of the show is sponsored by Anupama. Every day at 8:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
3: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
4: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर विम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर विम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड विम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
0: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
5: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स your travel mantra. Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
6: Don't miss out. Call 0208-150-2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
7: You know how fans shout at football matches?
8: Oh, wake up!
7: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
1: Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk. Anisa Nasir with The Big Show. Weeknights from 7 p.m.

0: मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, ये था मिस्ट्री गीत जिसे रानी जी आपने भी बूझ लिया। तू मुझे याद करे ऐसा तरीका निकले, मेरी एकतरफा मोहब्बत का नतीजा निकले। इतनी खामोशी से निकले हैं तेरे शोर से हम, जैसे बाजार के मजमे से जनाजा निकले। बहुत शुक्रिया जिनकी बहुत सारी यादें ताज़ा हुई इस गीत को सुनकर। और एक बहुत ही सैड न्यूज़ अभी तक जो है वो मेरे जहन से निकल नहीं पा रही, जो कुछ ही देर पहले मेरी नज़रों के सामने से गुजरी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी शायद, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर भी ना जाने क्या क्या उछलता कूदता रहता है, लेकिन अभी मुझे यकीन दिलाया गया है कि ये सही खबर है। और सीनियर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बेस्ड इन लंदन जनाब शौकत डार साहब हैज़ पास्ड अवे ड्यू टू हार्ट अटैक। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
1: लंदन'स नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन, लाइक अ गोल्ड इज 5।

मुझे जो आंख से ओझल दिखाई देता है, मुझे जो आंख से ओझल दिखाई देता है, वो चुप रहे भी तो मुझको सुनाई देता है। तुम्हारे पाँव में रख दी है शायरी अपनी, तुम्हारे पाँव में रख दी है शायरी अपनी, किसी को कौन यूं अपनी कमाई देता है। भाई अपनी कमाई हमें तो दी है, राजदीप जी ने, कहते हैं ये मेरा शेर है जो मैं आपको भिजवा रहा हूँ। और बात कर रही हूँ मैं डॉक्टर राजदीप जी की फ्रॉम देहरादून।

0: भी कई मील है। कहीं तो सुनाऊं, मेरा किस्सा भी तवील है। क्या बात है, बहुत खूब बल्कि बहुत ही खूब। बेहद शुक्रिया और एक दफा फिर से आपका हार्दिक स्वागत। लीजिए भी प्रोग्राम के ये पहले दो गीत, एक तो विजय जी ने सुनना चाहा था और दूसरा नैना जी ने। जितनी फरमाइशें मुझ तक पहुंची हैं उतनी ही मैं, मतलब बहुत मुश्किल है कि सारी की सारी जो है वो समो पाएं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा सुनवा सकूं।
1: This is Anisa Nasir on Like a Gold, Greater London. With competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you 128.9 Indian rupees today. Don't forget to exchange in branch online या फिर SBI Yono mobile app के जरिए. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और भाई अभी आप इजाज़त ही ले रहे हो कि मैं फरमाइश करूं या ना करूं, यहाँ लोग फरमाइशें दे के ठा ठा वो जाओ ये जा, चलिए जल्दी से भिजवाइए, लेट्स सी व्हाट आई कैन डू। दिलीप सरोज जी, बिल्कुल आपने सही कहा, आपका जवाब भी बिल्कुल सही था हमारे उल्टे पुल्टे को लेकर। अल्फाज थोड़े से आपने गड़बड़ किए तो मैं उसमें कन्फ्यूज़ रही, लेकिन एक तो आपने देर से भिजवाया इसलिए भी शामिल नहीं हो पाया, तो माई अपोलोजीज।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Okay, Nico, got some traffic up ahead, so let's box, box, box into BP to fuel up and grab a coffee.
3: Even F1 drivers like Nico Hülkenberg do everyday driving. That's why the Audi Revolut F1 team recommends BP Ultimate with active technology.
2: Grab us a sausage roll while you're in there. Nico? Hello?
3: Choose BP Ultimate for up to 375 more miles per year. Distance may vary due to factors like driving style, vehicle, load and weather. Based on continuous 6,400 miles per year use. See bp.com/ultimate.
1: This is Anisa Nasir with The Big Show.
4: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
5: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
6: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
7: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 ऑक्टोबर सुधी रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे फर्स्ट फ्लोर यूनिट 2 साउथ राइस्लिप HA40JS रोज कथा पछी महाप्रसाद पोथी यात्रा कपिल नारायण कथा कृष्ण जन्म गोवर्धन लीला रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगो मां जरूर जोड़ाओ वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777-2287509.
8: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
9: Lights on, shutters up, staff ready.
8: But today's customers don't start on the high street.
9: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
8: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
9: They walk into your competitors.
8: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
9: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
10: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
11: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
12: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
13: ये तो बताओ, कोई पता चला?
12: गुरु गुरु,
14: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
15: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है।
14: सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।

0: साधु तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र।
1: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन द 6th of November। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
2: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
3: लाइका गोल्ड लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो lykagold.com पे।
4: Artist of the Week is brought to you by our new podcast Lyka Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: और हम देखते रहेंगे उनकी फनकारी के जौहर फिल्मों में, उनकी एक्टिंग, और हमेशा याद रखेंगे वन एंड ओनली जनाब शशि कपूर जी, उन्हीं पर पिक्चर आए. ये गीत हमने शामिल किया आर्टिस्ट ऑफ द वीक के तहत. उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इंजॉय किया होगा. अब उज़्मा जी, आपने बड़ी ही मज़े की बात की है. ऑनेस्टली मेरा हंस हंस के बुरा हाल हो गया. कहती हैं मैंने आपको एक लकब दिया, एक टाइटल दिया है, आप हैं शायरी की चैट GPT. गुड वन, गुड वन. मेरे सुनने वालों का सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना, मैं क्या बताऊं, जबकि कुछ लोगों का तो नॉन सेंस ऑफ ह्यूमर इतना, क्या कहूं. लेकिन आप मेरे सभी सुनने वाले, सच्ची में मज़ा आता है आपसे बात करो, आपको बात की समझ भी आती है. अब एक को नहीं आई है और उन्होंने नाम तो नहीं लिखा, मुझे रेडियो वाली ने वो मैसेज फॉरवर्ड किया और लिखा है, आई डिडंट गेट योर जोक लव. तो लव अगर, क्योंकि आपने नाम नहीं लिखा तो आपने मुझे लव कहा, तो मैं भी आपको लव ही कहूँगी. तो अगर तो आपको पसंद आता तो मैं कहती हूँ लो जी, तो मेरा अपना जोक है, मैंने घर पे बनाया है. लेकिन नहीं जी, मैंने नहीं बनाया, आपको पसंद ही ना आया तो फिर बता देती हूँ, कमल शिवनानी जी ने भिजवाया था. वैसे मैंने आपके साथ शेयर करते हुए भी बताया था कि कमल जी ने भिजवाया है. तो वो शेर, सॉरी, जो कुछ इस तरह से था कि एक आदमी दूसरे को कह रहा था कि आजकल एक ऐसी चीज़ आ गई है कि अगर आप उसके सामने झूठ बोलो तो वो फ़ौरन पकड़ लेती, यानी कि आप झूठ नहीं बोल सकते, आपका झूठ पकड़ा जाता है. तो दूसरे ने कहा, अरे लो, उस चीज़ से तो मेरी कितने सालों पहले शादी हो चुकी है, यानी बीवी. अब देखो ना, शेर को या जोक को इस तरह खुल खुला के उसका बखिए उदेड़ के बताया जाए तो फिर क्या खख मज़ा आएगा. इसलिए ज़रा थोड़ा सा ध्यान से सुनना चाहिए. क्या ख्याल है, मैं सही कह रही हूँ? तो इसका मतलब है कि बीवी, गर्लफ्रेंड, पार्टनर, मतलब महिला से, यानी कि लेडी से आप जो है कोई बात छुपा नहीं सकते. आप समझ आए?
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: The Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और लीजिए भी गीत संगीत और बातचीत का सिलसिला जारी है। ये प्यारा सा गीत सुनना चाहता हमारी बहुत ही प्यारी सी मीनाक्षी जी। और मीनाक्षी जी ने भी एक मुझे लकब दिया है, कहती हैं आप शायरी की शेरनी हो। क्या बात है भाई, क्या बात है। आज बड़ा प्यार आ रहा है सबको मुझ पर। वैसे हमेशा ही आप प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। लीजिए आप इसी खुशी में बिग बॉस की बात कर लें। बिग बॉस इज़ बैक। एज यू ऑल नो कि 20th सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है, और इस साल भी सलमान खान ही हमेशा की तरह से होस्ट कर रहे हैं। हर रोज़ 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार पर जो है इसको एयर किया जाता है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जियो हॉटस्टार इज़ स्ट्रीमिंग एवरी एपिसोड अलॉन्ग विद अ लाइव 24/7 फीड फ्रॉम द बिग बॉस के 20 हाउस से, बिग बॉस 20 के हाउस से। जियो हॉटस्टार इज़ नाउ ऑल्सो अवेलेबल एज एन ऐप ऑन स्काई टीवी। तो और क्या कहना था, और बहुत कुछ कहना था। जैसे कि मैं पहले कह रही थी कि एक तो कटरीना कैफ की तस्वीर आज वायरल हुई है, और दूसरी जमाइमा गोल्डस्मिथ की शादी को लेकर चर्चे हैं। उन्होंने बिजनेसमैन कैमरॉन ओराइली के साथ 20 साल डिवोर्स के बाद जो है अब शादी की है, तो उनको बहुत सारी कंग्रेचुलेशंस। और क्या कहें,
3: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7pm with the best tunes, mind games and a bit of Ye Yavo. Only Like a Gold.
0: This is Anisa Nasir with The Big Show.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
5: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट TravelHubWorld.com।
6: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
7: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
8: Dubai is the place. 11, 11.
7: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
9: Danu 11, 11. Danu Properties. 11.
10: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
11: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
12: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
11: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
12: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
11: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
12: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
13: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है। बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके। जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट। एक शाम सोलफुल म्यूजिक, डिवोशन और एनर्जी के नाम। टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।
14: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
15: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
0: Laika Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. We're 5. Like a Gold is 5. Thank you.
13: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: देखो
1: प्यार से क्या, अभी तो गुस्से से देखने का भी टाइम नहीं है। और मोहब्बत हम कल भी करते थे, आज भी करते और आइंदा भी करते रहेंगे। वक्त आ गया है कि आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं मेरा साथ निभाने के लिए। एज़ ऑलवेज नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी। आप सोच रहे होंगे ना, ये किस बेजा तकल्लुफ में पड़ी हो, छुड़ाओ हाथ, जाओ, खुश रहो तुम। और मेरी भी दिली दुआ है कि आप खुश रहें। और आपको खुश रखने के लिए गोल्ड नाइट का जो म्यूज़िक है ख़ास तौर पर चुना जाता है, ज़रूर सुनिएगा। और सुबह काजल आ जाएंगी ब्रेकफास्ट शो लेकर। तो क्या ख्याल है, जाऊं? शब बखैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट। रब सोने दे हवाले।
2: दिस इज अनीसा नासिर विद अ बिग शो।
3: तुम देना साथ मेरा।
4: दिस पार्ट ऑफ द शो इज स्पॉन्सर्ड बाय ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा, एवरी डे एट 8 पीएम ऑन स्टार प्लस एंड स्ट्रीम इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।
5: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Thomas.
6: Daddy!
5: He needs to get home for bedtime stories because he does the absolute best voices. You help Thomas show he cares and we'll help you take care of business. Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: भक्ति, संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज। द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला, अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो, 18 सितंबर को बेक थिएटर हेज में। एक ही दिन में दो ग्रैंड शोज, दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। प्रभु श्री राम की लीला, हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव। 18 सितंबर, बेक थिएटर हेज। टिकट्स बुकिंग के लिए विजिट करें श्री राम लीला .theshowmanstudio.co.uk.
9: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day.
10: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
9: Southall Travel.
10: Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
9: Southall Travel can take you there.
11: Southall Travel, at all protected.
12: Get ready, UK. Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
13: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
12: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
13: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
12: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
14: Up next, non-stop classics on Gold Nights on Leica Gold.
15: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Leica Gold. Make it a date.

0: 8839-0880 or visit ragasun.com. Location, design, management, or catering. Ragasun.
1: Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The new Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions, and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danu Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
3: साउथ हॉल ट्रेवल तो प्रोटेक्टेड।
4: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
5: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203-773-633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडे। What's your travel mantra?
6: Leica Radio is proud to support the Mental Health Film Festival, Unspoken, featuring short films, feature films and panel discussions across London between October 9th and 11th.
7: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक न हुमे, आपके अपने Leica Gold पर.

0: पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।
1: हम प्यार तुम्हें करते हैं, हमें अपना

0: Cold Nights. Hit tracks non-stop throughout the night.
1: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Thomas.
2: Taxi!
1: He needs to get home for bedtime stories because he does the absolute best voices. You help Thomas show he cares and we'll help you take care of business. Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
4: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
5: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place.
6: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
8: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
9: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
10: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।